0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
0: Big 106.2 The Beat of Bollywood.

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटती। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Breakfast brought to you by Jetour UAE. Drive your future. Part of Elite Group Holding. The Big Mix with Zora. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
1: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटती। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
0: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 7:08।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: What a song to kickstart today. O Meri Laila Atif Aslam ka ye gaana.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: एंड कौन सा वो गाना है जो आप सुनना चाहते हैं? इनकेस देयर इज अ सॉन्ग जो आपको याद आ रहा है यार गाड़ी में बैठते ही कि यार ये गाना अगर सुन ले तो मजा आ जाएगा, गिव मी अ कॉल 800-1062 या फिर यू कैन व्हाट्सएप मी 054-309-1062 दैट 054-309-1062. पूरे एक घंटे तक यू हैव द चांस टू प्ले योर सॉन्ग्स. वी आर अर्ली मॉर्निंग इन्फ्लुएंसर्स. इन्फ्लुएंस आर एंटायर प्ले लिस्ट. कमिंग अप इन जस्ट अ व्हाइल इज द सॉन्ग दैट इज ऑन टॉप ऑफ द चार्ट्स दिस डे. ऊंचा लंबा कद फॉरएवर, the 2.0 version from Welcome to the Jungle. Yeah, 35 or so years pe ek phase aata hai har kisi ki life mein. Yaar ye jo daadi hai meri safed ho rahi hai, pak rahi hai, sam kehte hain, to is pakti hui daadi ko main rangoon ya should I just let it be? There's a guy who was rangoing it so far, but he suddenly decided to let it be and he's become like the talk of all WhatsApp chats. He made an appearance at Lord's, jiske bare mein baat karne wale hain. He's a well-known person. Kaun hai ye? Aur what is this funda behind not rangoing your daadi if you're a public figure? Coming up in just a while, iske bare mein baat karne wale, because everybody seems to be talking about that. So much more coming up on the show. That's called The Big Breakfast with me, Sid.

0: 106.2. The Beat of Bollywood. The Big Mix with Zora. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
3: नमस्ते।
4: ओला।
3: अस्सलामुअलैकुम।
5: बोंजूर।
6: नी हाओ।
5: डिड यू नो? नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया। यस, इवन इफ यू टाइप इन जेंजी लिंगो। इंट्रोड्यूसिंग सिया, योर एआई असिस्टेंट एट selfdrive.ae। सिया हेल्प्स यू रेंट द राइट कार इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स। नो स्क्रोलिंग। विजिट selfdrive.ae। सिया इज वेटिंग टू असिस्ट यू।
7: Wow, your hair color looks stunning.
8: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
7: Yeah, right.
8: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
7: Really?
8: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
7: I'm buying it right now.
8: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
9: This summer, drive home your dream SUV with Jetour's unbeatable offers. Enjoy VAT on us or 0% interest, a free service package and a 1 million kilometer warranty. With EMI starting from just 966 dirhams per month, your dream SUV is closer than you think. Visit Jetour showrooms across Abu Dhabi, Dubai, Ajman and Alain today. Jetour UAE, part of Elite Group Holding. Terms and conditions apply.
0: Big.

0: is 7:24 on the clock. Let's start with some good news this Tuesday morning.
1: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: Dubai school fees ki baat karte hain. Ab aap kahenge yaar school fees and good news kaise ho sakti hai? Batata hu main kaise ho sakti hai. There's going to be no tuition fees increase for 26-27, the academic year 26-27. KSTA ne confirm kiya that schools are going to keep the same approved fees while inspections remain paused for most schools. So that is the good news that I was talking about. Congratulations, all the parents out there. हाँ, मतलब अब समर कैंप वगैरह ये सब के खर्चे तो आपको उठानी पड़ेंगे, एंड देन पीयर प्रेशर में क्या क्या करना पड़ता है, हम पेरेंट्स को हम ही जानते हैं यार. बट या फॉरगेट अबाउट ऑल द प्रेशर अर्ली इन द मॉर्निंग. इट इज ऑल अबाउट लिसनिंग टू द म्यूजिक दैट यू वांट टू. कौन सा वो गाना है दैट गेट्स यू अप एंड रनिंग, लेट मी नो. यू कैन सेंड मी अ व्हाट्सएप 0543091062. मैंने खुद एक गाना लगाया हुआ है आपके लिए. पति पत्नी और वो दो से दम दमादम रीबूट. आनंद मिलिंद, उदित नारायण, अनुराधा पौडवाल, बोल है समीर के. दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड. गुड मॉर्निंग.
2: साला पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे. लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे. मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे.
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. The Big Breakfast brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy. Namaste.
3: Hola.
1: Assalamualaikum.
3: Bonjour.
4: Ni hao.
3: Did you know? Now just type and rent a car with Sia. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
5: InsuranceMarket.ae. We have insured Dubai families since 1995. The kids we covered then have kids we cover now. Get health insurance from insurancemarket.ae.
6: क्या आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है. सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें. सिर्फ 4,888 दिरहम में 100% डिजिटल. जितना आप चाहें आसान किश्तों में पे करें. आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ancfz.ae. अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन. अपना कारोबार, अपना फ्यूचर. Are you ready?

ज्यादा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: मॉर्निंग 8:06।
1: Bollywood.

माता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा। सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा। रहने दे, मुंह बंद रख, आंखें जो कहती है कहने दे। बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को।

0: आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है। सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें सिर्फ 4,888 दिरहम में, 100% डिजिटल। जितना आप चाहे आसान किश्तों में पे करें। आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ancfz.ae। अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन, अपना कारोबार अपना फ्यूचर।
1: वाओ, योर हेयर कलर लुक्स स्टनिंग।
2: थैंक्स, आई डिड इट मायसेल्फ दिस मॉर्निंग इन 5 मिनट्स।
1: या राइट,
2: नो इट्स हिना स्पीडी इजी हेयर कलर दैट्स मेड इन इटली। इट्स अमोनिया फ्री एंड एनरिच्ड विद हिना एक्सट्रैक्ट एंड आर्गन ऑयल।
1: रियली?
2: या, एंड विद द इजी कॉम्ब एप्लीकेटर इट जस्ट टेक्स 5 मिनट्स।
1: I'm buying it right now.
2: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color. Made in Italy.
3: The Big Breakfast brought to you by Jetour UAE. Drive your future. Part of Elite Group Holding.
4: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
5: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
3: Big weather update brought to you by Alras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
6: अचानक इट्स गॉन अ बिट क्लाउडी आउट देयर, हां, 8:14 ऑन द क्लॉक एंड 36 डिग्रीज सेल्सियस। थोड़े से काले बादल आसमान में नजर आ रहे हैं। ह्यूमिडिटी 65% पर, विंड्स ब्लोइंग एट 16 किलोमीटर पर आवर, हाइज ऑफ 38 राइट नाउ, लोज ऑफ 33 डिग्री सेल्सियस।
3: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour brought to you by insurancemarket.ae.

0: मुझे गुस्सा कभी आता ही नहीं।
1: गुस्सा आ जाएगा, कब आ रहा है? गुस्सा आ जाएगा,
2: गुस्सा आ रहा है देखिए।
0: ये गुस्सा नहीं है।
3: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: गुस्से से बोलेगी नहीं जाऊंगा, प्यार से बोलेगी मर भी जाऊंगा। इस जमीन और इस आसमान से परे जहां ना वक्त ना तुम्हारे मेरे सिवा कोई और, बस एक जज्बा हो कि तुम मुझ में हो और मैं तुम में।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद, सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: called Highway. Randy Pura, by the way, won a national award recently for his debut film as a director based on the life of Veer Savarkar. Swatantra Senani Veer Savarkar, directed by Randeep Hooda, best newcomer director ka national award.
1: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: Filmon ke baad hum log kar rahe hain, we are playing the Big Bollywood quiz. I've got Hina with me on the phone line. Hina, good morning.
2: Good morning, Zed. How are you?
0: Bachpan mein kya banna chahte the, Hina?
2: बचपन में बहुत कुछ था, सपने एयर होस्टेस बनना चाहती थी, पता नहीं क्या क्या बनना चाहती थी,
0: और बड़े होके क्या बन गए हो?
2: एचआर,
0: कॉर्पोरेट की दुनिया के हिमेश रेशमिया हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आपने बताओ कभी अपने एम्प्लॉयज को ऐसा स्पीच देने का की नौबत आई कि नोबडी रिमेंबर्स द मैन हु केम सेकंड, एवरीबॉडी रिमेंबर्स द मैन ओनली हु कम्स फर्स्ट, सिर्फ नील आर्मस्ट्रांग को याद करते हैं लेकिन चांद पे दूसरा आदमी, ऐसा कुछ दिया आपने कभी स्पीच
2: इस टाइप का? बट दूसरे मोटिवेशनल स्पीचेस बहुत देने पड़ते हैं।
0: वाओ, सो यू आर लाइक प्रैक्टिस्ड इन द आर्ट ऑफ मोटिवेशनल स्पीकिंग। तो चलो, आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर टाइम राइट नाउ, 30 seconds, यू गॉट टू मोटिवेट मी, ओके? व्हाट वुड यू से? कम ऑन, गो फॉर इट।
2: I mean, what should I say? You are already so motivated. We get motivated by you, by listening to you in the morning.
0: क्या बात है, मतलब कान ऐसे पकड़ के सीधा, मतलब उल्टा मोटिवेशन दे दिया यार। You are really good at your job, Hina. I am sure lots of people tell you on a daily basis. लेकिन उनमें से 9 में से 10 लोग मक्खन मार रहे होते हैं।
2: मालूम है, यही चलता है corporate world में।
0: You know, whenever I ask somebody who's in HR कि आप करते क्या हो, why do people get so apologetic when they say HR? यार क्या problem क्या है इसमें? हाँ है HR, छाती ठोके उसमें क्या है यार?
2: नहीं नहीं, I तो enjoy working.
0: You do, हाँ?
2: Yeah.
0: You are into corporate torture. You like doing it to people.
2: We've got used to it now.
0: चलो ठीक है, let's get down to business. And before I ask you, you know, the correct answer, एक और सीन सुने क्या? ये फिल्म was like सीनों का भरमार, right? एक सीन सुनने से बात नहीं बनती. Now I'll tell you why this was like a genius film according to me. ये एक सीन सुनिए. इट्स अ वेरी डार्क सीन, लेकिन इस सीन में से कॉमेडी निकालने का जो टैलेंट है वो सिर्फ आई थिंक राजकुमार ईरानी में, ओके? बिकॉज ऑन द फेस ऑफ इट इट्स अ वेरी वेरी सैड सीन, लेट्स लिसन टू इट।
3: बड़ी दुविधा थी, दोस्त को संभालते कि दोस्त की माँ की आंसू पोंछते। फिर हमने सोचा हटाओ यार, मटर पनीर पे कॉन्सेंट्रेट करो।
0: उसके बाद दोस्त की माँ जो है अपना बेलियन, जिस बेलन से वो रोटियां बना रही थी, वो बीमार बाप के बनियान में उसको खोजाती है। And then all of us in the cinema hall are laughing a bit uncomfortably, right? कि मतलब है तो ये काफी डार्क सीन, लेकिन हमें हंसी आ रही है इस सीन से, राइट?
2: That was yuck. My God, देखते ही उल्टी आ रही है।
0: सुन के उल्टी आ रही है तो देख के क्या होगा। 4th of September सुनते हैं ऐसा कि Three Idiots is going to come back, would you be one of those people you know queuing up for the tickets, or how big a fan yes. are you?
2: I would love to watch that film again and again and again.
0: है ना? तो 4th of September ऐसा, you know, some reports are saying that it's going to come back to the cinema hall. So I'm going to give you 2 open movie tickets because बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। You can go and choose to watch Three Idiots, Awara Pan 2, or whichever movie you want at a time of your choosing. All right, so congratulations.
2: Thank you.
0: Take care. That is Hina, our today's winner. Hai. Don't forget, roz subah ye mauka to flex a bit of Bollywood muscle and win 2 open movie tickets in the Big Bollywood Quiz.
1: Big 106.2. Big 106.2.
4: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
5: Namaste.
6: Hola.
5: Assalamualaikum.
6: Bonjour.
7: Ni hao.
6: Did you know? Now just type and rent a car with Sia. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
7: Wow, your hair color looks stunning.
8: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
7: Yeah, right.
8: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
7: Really?
8: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
7: I'm buying it right now.
8: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
1: Big 106.2. That's My Song by E. And.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है, देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे। बिग टाइम चेक
1: मॉर्निंग 9:09
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

इलेवन इलेवन पर आवारापन टू से ये आवारापन नाम का एक गाना रिलीज होने वाला है। कहते हाँ ये तो ठीक है, रोज होते हैं, लेकिन द हेडलाइन मेकिंग इवेंट इज दैट श्री अरिजीत सिंह अपने रिटायरमेंट से बाहर निकल के इस गाने को गाने वाले हैं। नाउ हियर्स वेयर आई थिंक दैट इट माइट बी अ मार्केटिंग कैंपेन इज दैट अरिजीत सिंह ने ऑलरेडी कह दिया था ना कि यार मैं प्लेबैक से रिटायर करने वाला हूँ, डजंट मीन कि आप मेरे गाए हुए गाने नहीं सुनने वाले हो, टिल 2027 मिड हो सकता है कि मेरे गाने आप सुने, डजंट मीन कि मैं नए गाने रिकॉर्ड करूँ। आई हैव ऑलरेडी लाइक recorded a lot of songs, so they are, you know, going to be staggered released through the next 1.5 years, he said around months ago, right? So it could be a part of that, lekin what the headline is, what the marketing caption is, that Arijit Singh has come out of retirement to sing Ye Awarapan Awarapan 2 se. Lekin I'm going to be on the show in just about 9:41 UAE time, saath milkar sunenge jab ye gana release ho jayega tab. Radha Shane Baloch version Didi from Durandar Revenge coming up in just a while. This is The Big Breakfast with me, Sid.

मिलाने और जमीन बाहर पसारे बोल रही थी कि हाउस मार्क कि तू मुझे मिला नहीं। ऐसा लगा था जैसे प्रिया के प्यार का पैराशूट भी स्लोली स्लोली स्लोली।

0: जान से गुजरते हैं फ्रॉम धुरंधर द रिवेंज, शाश्वत सचदेव का म्यूजिक. एवर स्पेंड टू मच टाइम स्क्रोलिंग टू फाइंड राइट रेंटल कार? Meet Sia, self-drives AI car rental assistant. Just type your budget, car type, any preference, or Sia instantly recommend karti hai the right car for you. No endless scrolling, just a quick and easy booking. Visit selfdrive.ae today.
1: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: ड्राइविंग से चलते हैं फ्लाइंग की ओर. नाउ हियर इज व्हाट हैपेंड. ऑफ कोर्स फीफा वर्ल्ड कप खत्म हो गया, स्पेन वन अगेंस्ट अर्जेंटीना, एंड ऑल्दो द वर्ल्ड कप इज ओवर, एक्सपेक्ट न्यूज स्टोरीज टू कीप ट्रिकलिंग इन. अभी भी खबरें हमको मिलती जा रही हैं कि क्या हुआ मैच के दौरान, मैच के बाद, मैच से पहले, एटसेट्रा, फाइनल्स, राइट. बट एक हवाई जहाज जिसका कैप्टन स्पैनिश पायलट ऑफ एन एयरप्लेन फुल ऑफ अर्जेंटीनियन फैंस फ्लाइंग at exactly the time the final between Spain and Argentina was taking place. Iske baad us airline captain ne kya kiya hoga, you will not be able to guess. Now I am all for pranks, but this was like taking it a bit too far. If you want to hazard a guess, agar aapko guess karna hai ki is pilot ne, Spanish pilot flying a plane full of Argentinian fans, kya kiya hoga, clue for you is a total sadist. Give me a call at 800-1062. Kuch time mein aapko bataunga ki kya kiya hai. This is like prank pro max. Hamal forces. Sari coming up in just a while. This is the Big Breakfast with me, Sid.
2: Prem bhai.
3: Are gira to.

0: आई कांट इवन इमेजिन कि अगर मैं उस फ्लाइट पे होता तो मैं कैसे रिएक्ट करता. एंड इफ आई वाज एन अर्जेंटीना फुटबॉल फैन, ओ माय गॉड.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस फ्लाइट फुल ऑफ अर्जेंटीनियन फैंस जो ठीक उस टाइम पर हवा में सफर कर रहे थे जब अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन का फीफा वर्ल्ड कप फाइनल हो रहा था. एक तो इन लोग की टाइमिंग देखिए यार, कंप्लीटली रॉन्ग टाइमिंग. ऊपर से जिस फ्लाइट में ये लोग जा रहे थे, ऑल ऑफ दीज अर्जेंटीनियन फैंस, उस फ्लाइट को उड़ा रहे थे एक स्पेनिश कैप्टन. स्पेन का कैप्टन हवाई जहाज उड़ा रहा है, पीछे बैठे हुए हैं ए प्लेन फुल ऑफ अर्जेंटीनियन फैंस. सो नाउ मैच खत्म होता है and guess what the captain decides to do. He decides to get a bit sadistic and he announces that Argentina has won the World Cup. The fans erupt out of joy. Matlab unki khushi ka thikana nahi rehta. Captain waits, he waits, waits. 5 to 10 minutes after, you know, the fans in the plane have had their fill of cheering, wo announce karta hai ki nahi, main to mazak kar raha tha, and Spain has actually won. Can you imagine the lambi khamoshi in that plane? Is this the greatest prank of all time? Yeah. Here's the tarifa. Just like Bacha, main bhi is Spain ke pilot ki tarif karna chahta hu. This is the Big Breakfast with me, Sid.

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद, सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: स्पिन बिग विद बिग टिकट,
3: 20 मिलियन दिरहम ग्रैंड प्राइज,
2: 1 मिलियन दिरहम बिग स्पिन चांस,
3: 5 कंसोलेशन प्राइजेस एंड वीकली ई ड्रॉज।
2: बाय नाउ एट bigticket.ae।
4: दिस इज एन 18 प्लस गेम, प्ले रिस्पांसिबली, TNCs apply.
5: नमस्ते,
6: ओला,
5: अस्सलाम वालेकुम,
7: बोंजूर,
8: नी हाओ।
7: डिड यू नो, नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया। यस, इवन इफ यू टाइप इन जेन ज़ी लिंगो। इंट्रोड्यूसिंग सिया, योर एआई असिस्टेंट एट selfdrive.ae। सिया हेल्प्स यू रेंट द राइट कार इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स, नो स्क्रोलिंग। विजिट selfdrive.ae, सिया इज वेटिंग टू असिस्ट यू।
1: The Big Breakfast brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy. Big 106.2. That's My Song by E. And.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 10:07।
1: Bollywood.

0: Every single day, every single hour, you'll find some new AI app that is hitting the market. But here's one of my recent favorites.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: अब अच्छा ऐप, अच्छा आइडिया जो होता है ना, वो सुन के लगता है कि यार ये पहले क्यों नहीं बनाया. It has to be easy to understand. A and B, it has to be really, really necessary. कि मतलब यार definitely इसकी ज़रूरत है ही. That's when it becomes a really good idea. Correct? I mean, ऐसा ही एक app के बारे में मैंने अभी कुछ देर पहले सुना है. That is called InTruth. Guess, ये AI app जो कि एक college student ने बनाया है, ये क्या करता होगा? It actually catches politician के झूठ in real time. आप पॉलिटिशियन हमें गुमराह नहीं कर पाएंगे. बरकरदार, ये क्या होता है, कैसे करना होता है आपको? गूगल क्रोम पे आप जाइए, क्रोम एक्सटेंशन में यू कैन एक्चुअली यू नो ऐड दिस एज अ क्रोम एक्सटेंशन. एंड व्हाट इट डज इज कि जैसे ही कोई भाषण आप सुन रहे हैं, देयर इज अ पॉलिटिकल डिबेट दैट्स गोइंग ऑन, यू आर लिसनिंग टू इट, वॉचिंग इट ऑन यूट्यूब और एनी सॉर्ट ऑफ थिंग ऑन योर यू नो ऑन योर लैपटॉप, ऑन योर ब्राउजर, देन ये इन रियल टाइम आपको बताएगा कि ये जो बात इसने कही है पॉलिटिशियन ने, ये सच है, झूठ है, कितना सच है, कितना झूठ है. ऑल्सो बिकॉज यू नो व्हेन पॉलिटिशियंस टॉक, दे हैव दिस आर्ट दैट दे हैव मास्टर्ड, कि वो ब्लैक और व्हाइट नहीं, काफी मोस्ट ऑफ द टाइम दे टॉक इन ग्रे एज वेल. सो इट विल काइंड ऑफ टेल यू के कितने वेरीफाइबल फैक्ट्स है, कितना वेरीफाइबल है, एंड हाउ मच ऑफ इट इज मिसलीडिंग. इट विल गिव यू डिटेल रिसर्च इफ एंड व्हेन यू रिक्वायर. एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ कोर्स, लाइक आई सेड, इज दैट यू डोंट हैव टू वेट फॉर द स्पीच टू एंड और पोस्टमार्टम नहीं करना पड़ेगा. इट्स गोना बी ऑल इन रियल टाइम. इज दैट द मोस्ट इंप्रेसिव ऐप यू हैव हर्ड ऑफ? लेट्स गो. सो द सॉन्ग सेज चुनरी चुनरी फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है. This is the Big Breakfast with me, Sid. Good morning. Big 106.2.

0: The beat of Bollywood.
1: You are just one call away from your dedicated claims manager. Get car insurance from insurancemarket.ae. Call 800-ALFRED 24/7.
2: लगता है बर्फ पड़ने वाली
3: है. कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: Big weather update brought to you by Alras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
4: It's been partly cloudy, partly sunny since this morning. Humidity at 55%, 37 degrees Celsius temperature right now. Winds blowing at 16 kilometers per hour. Is waqt highs of 38, lows of 33 degrees Celsius.
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.
5: जितना भी ट्राई करोगी लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही.
6: बिल्कुल नहीं छूटेगा, क्योंकि होमवर्क भी मेरा, रिसर्च भी मेरा, बट प्लान होगा आपका. फ्रॉम कैफेज टू स्ट्रीट फूड, बजट फाइंड्स टू वायरल स्पॉट्स, ट्यून इन टू द बिग रेकमेंड्स एवरी संडे 3 to 6 PM. क्योंकि अगर जोरा ने बेस्ट कह दिया तो बस कह दिया.
0: Catch the big recommends every Sunday from 3 to 6 p.m. with Zora. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big 106.2. Song of the Hour. Brought to you by

0: Hollywood. Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: Listen to her every day.
2: Mugambo! खुश हुआ।
3: अरे मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी, वो कहता है कि 59% लोग जो है देर रात तक जब जागते हैं, यू नो व्हेन यू आर इन योर बेड आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, यू एंड अप बाइंग रैंडम थिंग्स। तो आप करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग?
4: वो तो कभी भी कर लेते हैं, रात का जरूरी थोड़ी है।
3: अरे कभी भी कर लेते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आधी रात को जब आप बोर हो रहे हो तभी करें, आप दिन में भी ये कर लेते हैं।
4: बस जब भी अपने यहाँ खोलते कुछ ना कुछ ऑर्डर ही कर लेते हैं।
3: सबसे फालतू चीज क्या मंगाई आज तक आपने रैंडम ऑनलाइन शॉपिंग से?
4: याद नहीं है, बहुत सारी फालतू चीजें मंगवाई है। एक तो नहीं है स्क्रीन मैग्नीफायर, पता नहीं क्या मंगवा लिया।
3: स्क्रीन मैग्नीफायर आपको पता है ना, वो अजीब चीजें फ्री में नहीं आती हैं, हमें पता ही नहीं चलता है हम कितनी सारी शॉपिंग कर लेते हैं, थिंग्स दैट वी डोंट नीड। आई थिंक दैट इज व्हाट ऑनलाइन शॉपिंग इज। दो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑनलाइन शॉपिंग, बट आई एम ऑल्सो एडिक्टेड, तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
0: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. Big Traffic. Brought to you by selfdrive.ae.
5: Morning, it's 10:21 on the clock and E11 per heading north right after Mafraq Industrial going towards Banias. The usual hotspot, 4 to 5 minutes ki der, aajkal roz subah hone lagi hai, aaj bhi hai. Then there's 6:11 heading south going towards Alavir. You'll find a bit of congestion there as well, 3-4 minutes ki der. Then there's a 5 to 7 minute ka unusual traffic and this is heading west going towards University area in Sharjah on S116 Malia Street. And E11, 3:11 par to traffic aapko milega hi. Roz ki tarah 5 to 7 minutes ki der heading south going towards Dubai from Sharjah. A bit of congestion today at Ribat Street and this is as you take that exit from City Center Mirdev going towards Festival City. Yahan par ek incident report ho raha hai, so be careful. And then there is a bit of congestion building up at D75 and this is Sheikh Rashid Street. This is going towards Dubai Frame.
6: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
7: Are you going to go?
8: Yeah.
7: Cut it.

0: भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, बस एक
1: उठी बाबा।

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद, सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Unlimited. The biggest Bollywood hits non-stop. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 054-309-1062.
0: Big 106.2, the beat of Bollywood. The Big Mix, Miss Kiya Gaya.
3: Kar hi nahi sakte. Chaho bhi to nahi kar sakte.
4: You se batao Bollywood celebrity name, go.
5: Okay, Urmila Matondkar.
4: Ab you se batao movie.
5: Okay, ye mushkil hai.
4: क्या यार,
5: आई नो काफी होंगे बट एकदम नहीं आ रहा ज़हन में अभी.
4: यू मी और हम थी, आई कैन थिंक ऑफ वन नेम. मूविंग ऑन, यू से बताओ प्लेस. वेरी गुड वेरी गुड. अब यू से बताओ थिंग. ये तो सबको बताया, बचपन में यही तो आता था. यू से और किसी को कोई थिंग आता ही नहीं है. बट यू प्लेड रियली रियली वेल. आई नो मैंने कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट कर दिया आपके लिए यू देखे.
0: चीयर योर मिड डे मूड मंडे टू फ्राइडे 1 to 5 PM. द बिग मिक्स विद ज़ोहरा, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.com.

0: to play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो?
2: बोले तो मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
3: भाई वो कुछ 2000-4000 रुपए की जरूरत थी अपने।
4: दो या चार?
3: चार।
4: कब तक वापस लौटाएगा?
3: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
4: चार या
3: पाँच?
5: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड, प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, Saturday 7 to 9 PM and Sunday 10 AM to 12 PM only on Big 106.2, the beat of Bollywood. More requests, more dedications. This is Big Unlimited on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Unlimited. The biggest Bollywood hits non-stop. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Early in the morning.
0: The Big Breakfast with Sid. Weekdays from 6 to 10 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color and Jetor UAE, part of Elite Group Holding. To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song, and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood. The Big Mix, Miss Kiya Gya.
2: कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते।
3: यू से बताओ बॉलीवुड सेलिब्रिटी नेम, गो।
4: ओके, उर्मिला मातोंडकर।
3: अब यू से बताओ मूवी।
4: ओके, ये मुश्किल है।
3: जल्दी। क्या यार?
4: आई नो काफी होंगे बट एकदम नहीं आ रहा जहन में अभी।
3: यू मी और हम थी, आई कैन थिंक ऑफ वन नेम। मूविंग ऑन, यू से बताओ प्लेस। वेरी गुड, वेरी गुड। अब यू से बताओ थिंग, ये तो सबको पता है। बचपन में यही तो आता था, यू से और किसी को कोई थिंग आता ही नहीं है। बट यू प्लेड रियली रियली वेल। आई नो मैंने कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट कर दिया आपके लिए यू देख के।
0: चीयर योर मिडडे मूड मंडे टू फ्राइडे 1 to 5 PM द बिग मिक्स विद ज़ोहरा ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। Big 106.2 Song of the Hour, brought to you by InsuranceMarket.ae.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ए मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कुछ समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है, देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड आफ्टरनून, इट्स 108 ऑन द बिग क्लॉक।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: Big.
2: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
3: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
4: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
5: 38 डिग्री सेल्सियस बाहर, काफी ज्यादा ह्यूमिडिटी ऑलरेडी 60% पे है, पार्टली सनी है, थोड़ा सा क्लाउडी है, दैट्स एनी कंसोलेशन। हाईज आज से ज्यादा नहीं जाएंगे, लोज एक्सपेक्टेड है टू हिट 33।
4: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me.
1: Big 106.2. Big.

0: short bike phase since 95. The kids we are then have kids we are now. Get health insurance from insurancemarket.ae.
1: The Big Mix with Zohra on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: 3-2 से आई नहीं on the big mix, लेकिन मैं तो on the big mix आई हूँ. From 1 to 5 आप मेरी आवाज सुनने वाले हो. This is Big 106.2, the beat of Bollywood. पहले घंटे में हम खेलते हैं the big Bollywood undercover. और अगर आपको लगता है कि आप बड़े ही you know pro हो, एकदम एक नंबर A1 हो इन आइडेंटिफाइंग कि इन हिंट्स के बीच में किस बॉलीवुड सेलिब्रिटी का मैंने मतलब ऐसे आपको टीज किया है, देन आई थिंक आज के लिए भी थोड़ा आसानी हो जाएगा आपके लिए. आई हैव ट्राइड टू कीप इट अ लिटिल वेग, बट एक दो मैंने थोड़े इजी क्लूज भी दे दिए आपको. चलो लेट्स गेट इनटू इट. ठीक है, फीमेल सेलिब्रिटी की बात करी हूँ आज. शी मेड अ स्टेलर एक्टिंग डेब्यू इन 2010 एंड इमेजिन दिस, ऐसे बहुत कम सेलिब्रिटीज रहे हैं हु हैव गॉटन अ चांस टू मेक अ डेब्यू अगेंस्ट अ सुपरस्टार, अलोंगसाइड अ सुपरस्टार, राइट. इन्होंने सलमान खान के साथ अपना डेब्यू किया 2010 में. ठीक है, बहुत ही बड़ा एपिक सा इन्होंने डेब्यू किया. इनके भाइयों का नाम है लव और कुश. लव एंड कुश इनके भाइयों का नाम है. शी गोज बाय अ वेरी क्यूट निकनेम सोना. एंड अगर आपने इनके साथ ज्यादा पंगे लेने की कोशिश की तो इनके पापा ना आपको खामोश करवा देंगे. किसकी बात कर रही हूं मैं? शी मेड अ स्टेलर एक्टिंग डेब्यू इन 2010 ऑपोजिट सलमान खान. हर ब्रदर्स आर नेम्ड लव एंड कुश. शी गोज बाय द निकनेम सोना पॉपुलरली. एंड इनके पापा आपको खामोश करवा देंगे अगर आपने इनके साथ कुछ पंगे लेने की कोशिश की. किसकी बात कर रही हूं? इफ यू थिंक यू नो विच सेलिब्रिटी आई एम टॉकिंग अबाउट, ऑल यू गॉट टू डू इज कॉल मी. हमारा टोल फ्री नंबर है 800-1062. दैट्स 800-1062. Call me and tell me किसकी बात कर रही हूं मैं.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस
1: ए मामो
0: सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बीट 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: Where is your next adventure taking you? Live streaming from a safari trip? Posting pictures from a trekking adventure? Or FaceTiming your family from a remote island? Whatever your adventure looks like, there's a data and calling plan made for you. With Roam Like Home, use your local data and minutes abroad. Starting from just 100 dirhams, Roam Like Home with Freedom Plans. To subscribe, visit the E& UAE app or our website. T's and C's apply. E& Go for more.
4: Listen to her every day.
5: Mugembo! खुश हुआ।
6: हाय कृष्णा, हाउ आर यू?
7: ऑल वेल, थैंक्स मानसी।
6: हाँ, मैंने एक रिसर्च पढ़ी जो कहती है मेन यूजुअली डोंट गेट एक्साइटेड फॉर देयर ओन बर्थडेज, इट्स यूजुअली देयर वाइव्स हु प्लान देयर बर्थडेज एंड दे गेट वेरी वेरी एक्साइटेड, बट मेन इन जनरल डू नॉट गेट एक्साइटेड फॉर देयर ओन बर्थडेज। डू यू अग्री विद दिस रिसर्च? डू यू गेट एक्साइटेड फॉर योर बर्थडे?
7: पर्सनली आई कंप्लीटली अग्री विद दिस। I don't get myself, you know, let's say, delve into these preparations and all. I am thankful to my wife. She does everything for me. Normally, like, something to excite about is, like, you when you have family backing up with every ups and downs, you don't take time in developing those, you know, the special events, because every day you try to make them comfortable, easy for them, and they do this when you have your special event.
6: So, according to you, because... You have so many responsibilities as a man, you don't enjoy your own birthday. Yeah, aap kehna cha rahe.
7: Thank you for summarizing it. Yeah.
6: So you don't get excited like us women do ke ek mahine pehle se main ye outfit pehnungi, birthday ke din mujhe yahan jana hai, ye trip leni hai, nahi.
7: For sure, no.
2: Keep your evenings electric. 5 PM to 9 PM. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood. Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
6: ट्रैफिक का हाल फिलहाल E311 शेख मोहम्मद बिन जायद रोड लेकर अगर आप शारजा की तरफ जा रहे हैं आपको मिल जाएगा हैवी ट्रैफिक। दिस इज स्टार्टिंग D93 तनी स्ट्रीट गोइंग ऑल द वे अंटिल S112 मलीहा रोड। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है फॉर एटलीस्ट अबाउट 12 मिनट्स। उसके अलावा थोड़ा सा हैवी ट्रैफिक आपको मिल जाएगा तवार 2 के पास, साथ ही साथ लाइट ट्रैफिक E11 इतिहाद स्ट्रीट के पास, 5 से 6 मिनट का वहां पर डिले। ऑल्सो लाइट ट्रैफिक DIFC के पास आपको मिल जाएगा अल सुकूक स्ट्रीट पे, NE44 रासल खोर इंडस्ट्रियल एरिया 2 के पास। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक फॉर अबाउट 3 to 4 minutes. Any other update, you can let us know on our WhatsApp 0543091062.
2: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
8: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
9: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है जोहरा on the Big Mix on Big 106.2. The beat of Bollywood.

0: Self-Drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae. The Big Mix with Zohra on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Fast track song of the hour, Matar Gashti, जो चलती रहती है शो पे भी शाम 5 बजे तक. फिलहाल मेरे साथ फोन लाइन पे है सैयद. हाय सैयद, हाउ आर यू?
2: Hi Zohra, I'm fine. How are you?
1: कौन से टनल में हो जो ऐसी आवाजें आ रही जैसे पता नहीं अभी टेक ऑफ होने वाले हो?
2: Just reaching my home.
1: Reaching your home? काम खत्म भी हो गया?
2: At lunch break, we have lunch break from 1 to 3.
1: Oh, so you go home and have lunch and come back?
2: Yes.
1: That's so nice, यार. ऐसा होना चाहिए जॉब कि घर जाओ आराम से अपनी फैमिली के साथ बैठ के खाना खाओ. Nice, yeah, very nice. चलो नजर ना लगे.
2: My family is not here, so.
1: Oh, नहीं यार, ये क्यों बोल दिया? Sad हो गई हूँ मैं अब. तो आप अकेले खाते हो घर जाके?
2: Yes.
1: अकेले cooking भी करनी होती होगी आपको?
2: Yes, अकेले cooking.
1: अरे यार, एक एक करके जो चीजें आप बता रहे हो मैं sad होती जा रही हूँ यार. Sad नहीं होना, अभी हमें खुश होना है, ठीक है? चलो बॉलीवुड की बातें करते हैं, थोड़ा खुश हो जाते हैं. मैंने आपको 4 क्लूज दिए थे सैयद, वो क्लूज सुन के आपको बताना था, है ना. इनका डेब्यू हुआ सलमान खान के साथ. इनके भाइयों का नाम है लव एंड कुश. शी गोज बाय द निकनेम सोना. एंड इनके पापा जो है, अगर आपने पंगा लिया तो ये पापा जो है वो आपको खामोश कर देंगे. मैं किसकी बात कर रही हूँ?
2: सोनाक्षी सिन्हा की.
1: बिल्कुल सही. सोनाक्षी सिन्हा की बात हो रही है. आपकी आवाज से ऐसे लग रहा है कि सोनाक्षी सिन्हा के नहीं लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा के आप डेफिनेटली फैन रहे हो. चलो, अगर शत्रुघ्न सिन्हा के फैन रहे हो, अभी मुझे शत्रुघ्न सिन्हा की तरह खामोश एक बार बोल दो, पूरी जोश के साथ. नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसमें दम ही नहीं था. इसमें तो मक्खी तक ना खामोश हो.
2: खामोश.
1: शाबाश. चलो यार, बहुत मजा आ गया सैयद. होपफुली आज आपका जो लंच होगा इतना बोरिंग नहीं होगा. एंड होपफुली यू गेट टू हैव लंच विद योर फैमिली सून. एंड ऑन दैट नोट, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू. हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय सैयद. यार मुझे बड़ा बुरा लगता है यार, ऐसे अच्छा नहीं लगता. बिकॉज आई लाइक व्हेन एवरीवन कम्स टुगेदर, साथ में खाना खाओ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो. दैट्स यू नो, आई डोंट नो, इट्स जस्ट अ होलसम मोमेंट. आई नो पीपल माइट से लाइक इट्स नो बिग डील, अकेले खाने में भी कोई कुछ बुरा नहीं है. ऑफ कोर्स कुछ बुरा तो बिल्कुल भी नहीं है, बट इट्स ऑब्वियसली अ लिटिल मोर ब्यूटीफुल व्हेन यू हैव योर लव्ड वंस विद यू. सो ओनली जस्ट विशिंग एंड होपिंग कि आपकी भी फैमिली आपको मिल जाए जितनी जल्दी हो सके, इफ यू आर अवे फ्रॉम होम, अवे फ्रॉम फैमिलीज. ऑन दैट नोट, लेट्स कंटिन्यू. ब्यूटीफुल म्यूजिक फॉर यू on the big mix. Cocktail 2 se Bandhu 2.0 coming your way right here.

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: attack on its training system last year may have exposed the personal data of thousands of diplomats. The full scale of the breach is still unclear. And a stately home in London, which provided vital intelligence during the Second World War, is opening to the public for the first time as a museum. Trent Park House was used as a prison for German generals, with their rooms bugged and their conversations monitored. BBC News.
1: Fan Network News from the BBC. Great coverage, vibrant colour, natural finish, all in just 5 minutes. Henna Speedy Easy Hair Colour, made in Italy. Big 106.2.
2: जब वो चले तो सब देखते रह जाए और जब वो रुके तो वक्त बचाए और वो जब हंसेगी उसके सामने झुक के अपनी बाहें फैला के कहूंगा I love you.
1: When the clock strikes sass, she walks in. Fashion, films and fun. The Big Mix with Zohra on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
3: Yes, yes and yes. फाइनली मतलब ये हमारा जो दिल टूटा था जब हमने ये न्यूज़ पढ़ी थी कि अरिजीत सिंह अब और सिंग नहीं करने वाले, वो जा चुके हैं हमारी ज़िंदगी से क्योंकि वो बॉलीवुड से जा चुके हैं, गाने वाने उनको नहीं करना है, पता नहीं क्या क्या रूमर्स आ गए थे, पॉलिटिक्स में घुस रहे हैं, उनको डायरेक्शन करना है, फिल्म डायरेक्शन करना है, एंड ऑब्वियसली इट वॉज अ बिग बिग हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट फॉर ऑल अरिजीत सिंह फैंस. लेकिन अब वो जो है वो हमारा जो दुखड़ा है वो ख़त्म होने वाला है, हमारा जो वो फेज था हार्ट ब्रोकन वाला वो ख़त्म होने वाला है, बिकॉज अरिजीत सिंह ने डिसाइड कर लिया कि उनका जो ब्रेक था छोटा सा वो बहुत छोटा ही था, एंड ही इज ऑलरेडी बैक विद वन ऑफ द मोस्ट, आई थिंक ये बनने वाला है सबसे पॉपुलर गाना इस मूवी का. एक तो इनकी आवाज, दूसरा ऑब्वियसली इफ इट्स आवारापन 2, यू ऑलरेडी नो द ओरिजिनल वाज अ कल्ट, सो आई थिंक दिस मूवी इज ऑन इट्स वे टू बिकमिंग दैट कल्ट. मोर ऑन दैट इन जस्ट अ बिट. लेट्स किक स्टार्ट द आर प्यार तेनू करदा गबरू रोमी दी आवाज. रेडियो ऑन बिग 106.2, दिस इज द बीट ऑफ बॉलीवुड. यू विद मी ज़ोहरा, अ वेरी गुड आफ्टरनून.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड आफ्टरनून, इट्स 2:05 ऑन द पिक क्लॉक।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

Very depressing news for all of us, especially Arijit Singh fans. मतलब बहुत sad हो गए थे because जैसे हम बोलते हैं ना खाने में नमक स्वाद अनुसार, वैसे I think Arijit Singh हो गए थे हर movie में. मतलब Arijit Singh स्वाद अनुसार, मतलब उनका होना जरूरी ही था. And I feel like obviously we were all missing his voice in these recent movies. So I think उन्होंने realize किया and decide किया कि यार चलो यार इतना ज़्यादा to take this you know away from them, this love that they have for me is not fair. And he's made a comeback finally. आवारापन 2 जो मतलब मूवी आ रही है, एंड ऑब्वियसली वी आर ऑल वेरी वेरी एनीवे एक्साइटेड फॉर दैट मूवी. वी हैव वन मोर रीजन टू बी एक्साइटेड फॉर इट इज हिज वॉइस, इनकी आवाज जो सुनने मिलेगी. फिलहाल ये गाना रिलीज हुआ है, इट्स कॉल्ड ये आवारापन, एंड अरिजीत सिंह ऑब्वियसली हैज संग द सॉन्ग. छोटा सा आपको मैं स्निपेट सुनाना चाहूंगी क्योंकि व्हाई नॉट, आई मीन इट्स अरिजीत.

0: You are just one call away from your dedicated claims manager. Get car insurance from insurancemarket.ae. Call 800-ALFRED 24/7.
1: The Big Mix with Zohra on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: सबको इंतजार था यार, everyone has been waiting for this moment, क्योंकि जब से ये अनाउंसमेंट मतलब ऑफिशियल हुआ था दैट अरिजीत सिंह जो है इज नॉट गोइंग टू सिंग एनी मोर, आई थिंक दैट वॉज अ वेरी

आई एम ऑलरेडी इन लव. एक तो पहले ही ये मूवी की एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा है, इमरान हाशमी है उसके ऊपर, अरिजीत सिंह की आवाज़ है. येस ऑफ कोर्स आई नो वर ऑल मिसिंग मुस्तफ़ा जाहिद एंड उनके भी आई एम प्रीटी श्योर ये जो रिवैम्प्ड गाने हैं वो आएंगे ही आएंगे, बट अरिजीत सिंह मेकिंग अ कमबैक विद दिस मूवी आई थिंक ब्रिलियंट चॉइस. इनफैक्ट दिस मार्क्स हिज रीयूनियन विद विशेष फिल्म्स. उन्होंने विशेष फिल्म्स के साथ ही बहुत सारे हिट गाने बनाए हैं, ऑल ऑफ देम माई फेवरेट्स हैं, फिर मोहब्बत, तुम ही हो, मुस्कुराने की वजह, खामोशियाँ, हमारी अधूरी कहानी, ऑल ऑफ दीज हिज कोलैबोरेशन with Vishesh film. So obviously he had to deliver another epic love song jo is gaane se matlab jhalak raha hi hai. So very very excited for it yaar. Arijit Singh ki awaaz, I think now that we have him back in the industry, I think wo jo ek cheez adhuri adhuri si feel ho rahi thi wo ab nahi feel hogi yaar.

0: साला पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: दिस समर देयर आर सरप्राइजेस ऑल अक्रॉस दुबई वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड। More offers, more experiences, more reasons to celebrate. With E&, the strategic partner of Dubai Summer Surprises, enjoy up to 70% off on devices and accessories from 2nd of July to the 30th of August. Learn more at www.e&.ae. T's and C's apply. E&, strategic partner of Dubai Summer Surprises. E&, go for more.
3: नमस्ते।
4: ओला।
3: अस्सलाम वालेकुम।
5: बोंजूर।
6: नी हाओ।
5: डिड यू नो, नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया। यस, इवन इफ यू टाइप इन जेन ज़ी लिंगो। इंट्रोड्यूसिंग सिया, योर एआई असिस्टेंट एट selfdrive.ae। सिया हेल्प्स यू रेंट द राइट कार इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स। नो स्क्रोलिंग, विजिट selfdrive.ae। सिया इज वेटिंग टू असिस्ट यू।
7: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
8: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
9: थोड़ा थोड़ा सा क्लाउडी, बहुत ही ज्यादा सनी, 37 डिग्री सेल्सियस बाहर, ह्यूमिडिटी गोइंग अप, रीचिंग 63% एट द मोमेंट, हाईज आज जाएंगे 38 तक। आज शाम लो के टेम्परेचर्स एक्सपेक्टेड है टू फॉल डाउन टू अबाउट 33। दिस इज द पिक मिक्स विद मी ज़ोहरा।
1: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.
10: Got a song in your head right now? Just WhatsApp it and we'll play it for you on Big Unlimited. Whether it's your favorite track, a shout out or a message for someone special, send your name, space, your song name and your message to 0543091062. Big Unlimited, your request show from 11 a.m. to 1 p.m. Monday to Friday, only on Big 106.2. The beat of Bollywood.
11: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
12: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
1: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ज्यादा तो मैं भी शरीफ हुआ था और शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
3: Drive home a brand new Jetter. Buy now, pay next year. Zero VAT or zero interest. With EMIs starting from just 966 dirhams per month.
1: Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
4: हां जी, अगर आप जा रहे हैं शारजा की तरफ E311 लेकर शेख मोहम्मद बिन जायद रोड पे आपको ट्रैफिक मिल जाएगा थोड़ा सा हैवी। दिस इज स्टार्टिंग DAD9 कवानी स्ट्रीट से शुरू हो रहा है गोइंग अंटिल शारजा इंडस्ट्रियल एरिया 11। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है एटलीस्ट 12 से 15 मिनट के लिए, वहां पे आपको डिले मिलेगा। उसके अलावा आपको मिल जाएगा थोड़ा सा लाइट ट्रैफिक ऑन DAD9 एयरपोर्ट स्ट्रीट। उसके अलावा थोड़ा सा ट्रैफिक आपको मिल जाएगा इफ यू आर अराउंड अल अमाल स्ट्रीट, हफ्तूर सिटी से होकर आप जा रहे हो, वहां पर एक कार एक्सीडेंट हुआ है खलीजल तिजारी स्ट्रीट पे विच causing at least about a 5 to 7 minute delay. Any other update, you can let us know on our WhatsApp 0543091062.
1: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae. Big.

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। वेरी गुड आफ्टरनून। 3:07 हो चुके हैं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Mix with Zohra on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: अरे क्या fun topic मिला है आज to talk about, because I feel like on a daily basis हम ये सारी चीजों को लेके struggle कर रहे होते हैं and we feel like इसका तो कोई solution नहीं है यार, हम कुछ नहीं कर सकते, इसका कुछ नहीं होगा, we are going to you know just end up being like this forever. Okay, let's get straight to it. ठीक है, and what's the big deal today? I'm talking about things that you could do to trick your brain into not feeling a certain way, है ना? For example, सबसे common example, आपको नींद नहीं आ रही, ये तो मेरे साथ बहुत होता है. आई गेट टू बेड बट एक डेढ़ घंटा मेरा मिनिमम होता है, यू नो ट्विस्टिंग टर्निंग, कुछ ना कुछ ख्याल आ रहे होते हैं, आई जस्ट कांट स्लीप. तो अगर आपके साथ भी ऐसे हो रहा है, यू नॉट एबल टू स्लीप, व्हाट यू गॉट टू डू इज ब्लिंक रैपिडली फॉर अ मिनट. एकदम जल्दी जल्दी ब्लिंक करो एक मिनट के लिए. अपेरेंटली दैट हेल्प्स यू फील स्लीपी. उसके अलावा इफ यू फीलिंग नर्वस, इट सेज दैट यू शुड पिंच योर नोज टू हेल्प काम योर सेल्फ डाउन. ऐसे जोर जोर से अपनी नाक को पिंच करो. इफ यू लो ऑन एनर्जी, ये तो मेरे साथ कभी नहीं है, आई एम ऑलवेज हाई ऑन एनर्जी, लेकिन इफ यू आर लो ऑन एनर्जी, ठंडा पानी अपने मुंह पे मारो.

इफ यू फीलिंग एंक्शियस तो अपने दिल पे अपना राइट हैंड रखो एंड टेक स्लो ब्रेथ्स. ये तो मैंने काफी मूवीज में देखा है, मुझे बहुत ही ये फेक चीज लगती थी बट अपेरेंटली इट्स ट्रू. इफ यू फीलिंग लेजी तो अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से, सो इफ यू आर अ राइटी तो लेफ्ट हाथ से ब्रश करो, बट इफ यू आर अ लेफ्टी तो राइट हाथ से ब्रश करने की कोशिश करो, सो यू विल नॉट फील लेजी. स्टफी नोज, ये तो मेरा बहुत ही कॉमन है. आई थिंक मोस्ट पीपल इन द यूएई हैव अ प्रॉब्लम स्टफी नोज, डस्ट एलर्जी हो या जो भी हो, उसकी वजह से अगर आपको स्टफी नोज फील हो रहा है, प्रेस एन आइस क्यूब अगेंस्ट द रूफ ऑफ योर माउथ, दैट हेल्प्स क्लियर आउट योर नोज. आई फील लाइक ऑल ऑफ दीज टिप्स एंड ट्रिक्स आर सो सो हैंडी, सो सो यूजफुल, बट एट द सेम टाइम आई फील कि हम मिलेनियल्स के साथ ये सारी चीज़ें हो रही होती है ऑन अ डेली बेसिस. नींद नहीं आती, नर्वसनेस हो रही होती है, एंग्जाइटी है, वी आर लो ऑन एनर्जी, स्टफी नोज है. बाय दैट लॉजिक वी हैव टू डू सो मेनी थिंग्स ऑल टुगेदर. ठंडा पानी मुँह पे मारते मारते नाक दबानी होगी, ब्लिंक भी करना होगा. आई थिंक बाय द एंड ऑफ इट दिस विल जस्ट ब्रेक द वे अब brain works.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बीट 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: Where is your next adventure taking you? Live streaming from a safari trip, posting pictures from a trekking adventure, or FaceTiming your family from a remote island? Whatever your adventure looks like, there's a data and calling plan made for you. With Roam Like Home, use your local data and minutes abroad, starting from just 100 dirhams. Roam Like Home with Freedom Plans. To subscribe, visit the E& UAE app or our website. T's and C's apply. E&. Go for more.
4: Namaste.
5: Hola.
4: Assalamualaikum.
6: Bonjour.
7: Ni hao.
6: Did you know? Now just type and rent a car with Sia. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
4: Namaste.
5: Hola.
4: Assalamualaikum.
6: Bonjour.
7: Ni hao.
6: Did you know? Now just type and rent a car with Sia. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
8: Listen to her every day.
9: Mugambo! खुश हुआ।
10: हाय कृष्णा, हाउ आर यू?
11: ऑल वेल, थैंक्स मानसी।
10: हाँ, मैंने एक रिसर्च पढ़ी जो कहती है मेन यूजुअली डोंट गेट एक्साइटेड फॉर देयर ओन बर्थडेज, इट्स यूजुअली देयर वाइव्स हु प्लान देयर बर्थडेज एंड दे गेट वेरी वेरी एक्साइटेड, बट मेन इन जनरल डू नॉट गेट एक्साइटेड फॉर देयर ओन बर्थडेज। डू यू अग्री विद दिस रिसर्च? डू यू गेट एक्साइटेड फॉर योर बर्थडे?
11: पर्सनली आई कंप्लीटली अग्री विद दिस। I don't get myself, let's say, delve into these preparations and all. I am thankful to my wife. She does everything for me. Normally, like, something to excite about is, like, when you have a family backing up with every ups and downs, you don't take time in developing those, the special events, because every day you try to make them comfortable, easy for them, and they do this when you have your special event.
10: So, according to you, you have so many responsibilities as a man, you don't enjoy your own birthday. Yeah, aap kehna cha rahe.
11: Thank you for summarizing it. Yeah.
10: So you don't get excited like us women do ke ek mahine pehle se main ye outfit pehnungi, birthday ke din mujhe yahan jana hai, ye trip leni hai, nahi.
11: For sure, no.
2: Keep your evenings electric. 5 PM to 9 PM. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
12: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
13: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
14: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
15: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
16: 37 डिग्री सेल्सियस बाहर, ह्यूमिडिटी बढ़ते हुए 65% पर पहुंच चुकी है। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी ह्यूमिड डे, थोड़ा सा क्लाउडी हो सकता है, बट इट्स गोइंग टू बी मोस्टली सनी द रेस्ट ऑफ द डे। हाईज आज जाएंगे 38 तक, लोज विल ड्रॉप डाउन टू अबाउट 33 लेटर दिस इवनिंग।
2: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: self-drives new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
1: हाँ जी, गुड आफ्टरनून. 3:33 हो चुके हैं. जोहरा के साथ अप ऑन द बिग मिक्स. फिलहाल दैट वाज द फास्ट ट्रैक सॉन्ग ऑफ द ईयर, ब्रॉट टू यू बाय selfdrive.ae. एंड इफ यू नीड अ रेंटल कार एनी टाइम, देन ऑल यू गॉट टू डू इज गेट इन टच विद सिया फ्रॉम सेल्फ ड्राइव. दैट इज अवेलेबल 24/7 एंड इवन अंडरस्टैंड्स 40 लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग जेन जी टेक्सटिंग. हाँ जी, जो हमें भी नहीं समझ आता वो सिया को समझ आ जाता है. सर्च, चूज एंड बुक योर परफेक्ट कार इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स. ट्राई सिया टुडे एट selfdrive.ae. फिलहाल मूविंग to the next song. This one's from Cocktail 2. I think safe to say this is recent times mein har kisi ka current favorite that plays on loop. Mashu ka gaane ka naam, right here on the Big Mix. A very, very good afternoon with you until 5. I'm Zora.

0: सारा पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है जोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक 4:05 ऑन द बिग क्लॉक। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: 37 डिग्री सेल्सियस बाहर, ह्यूमिडिटी बढ़कर 67 पर पहुंच चुकी है। इट इज गोइंग टू बी अ ब्राइट सनी एंड ह्यूमिड डे। लोज एक्सपेक्टेड टू टच अबाउट 33 लेटर दिस इवनिंग।
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट alras.me। बिग 106.2। बिग 106.2।

0: Big Mix with Zohra on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Absolutely. Shehar ki ladki aapke saath all the way until 5. My name is Zohra. Filhal hum khel rahe hain name place movie thing. Main fatafat se aapko ye game samjhati hoon. And if you think that you can pull it off, then all you need to do is call to play with me. Theek hai? Name place movie thing. Bahut hi simple game hai. Just like you used to play name place animal thing bachpan mein. Is pe bas maine do twists lagaye hain. Naam aapko mujhe Bollywood celebrity ka बताना है और मूवी का नाम बताना है इंस्टेड ऑफ यू नो द यूजुअल प्लेस एनिमल थिंग. यहाँ पे एनिमल्स का हमें कोई काम नहीं है लेकिन बॉलीवुड मूवीज और सेलिब्रिटीज का बहुत बहुत ज्यादा काम है. सो इफ यू थिंक यू आर गुड एट बॉलीवुड एंड यू कैन प्ले द गेम, आपका मेंटल वर्क बहुत ज्यादा अच्छा है क्योंकि पेपर पेन का यहाँ पे कोई काम नहीं है. 5 सेकंड का टाइम भी मैं आपको दूंगी. इफ यू थिंक यू आर क्विक देन ऑल यू गॉट टू डू टू प्ले विद मी इज कॉल 800-1062. दैट्स आवर टोल फ्री नंबर. दैट्स 800-1062. कॉल एंड प्ले नेम प्लेस मूवी थिंग विद मी.

0: Sia, self-drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae. The Big Mix with Zohra on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: बिल्कुल सही, 427 हो चुके हैं Zohra के साथ upon the Big Mix, and it is time for us to play.
2: Are you ready for this?
0: Name, place, movie, thing.
1: Yes, that's right. Name, place, movie, thing. And आज मेरे साथ खेलने वाली है एक ऐसी मतलब पर्सनालिटी जिनका नाम आई थिंक बहुत मेन कैरेक्टर एनर्जी देता है, टीना. हाय टीना.
3: हाय.
1: इतना क्यों ब्लश कर लिया?
3: मेन कैरेक्टर एनर्जी सुन के.
1: सो क्यूट यार, यू आर सो इजी टू प्लीज. मतलब कुछ भी प्यार से बोल दो आप हंसने लग जाओगे. टीना इतनी प्यारी आवाज है यार आपकी, आप प्यारे भी लगते होंगे बड़े. अच्छा लगता है ना, स्पेशली ऑनेस्टली व्हेन गर्ल्स कॉम्प्लीमेंट गर्ल्स. मेन के कॉम्प्लीमेंट्स हमें मैटर ही नहीं करते, बट इफ अ वुमन पासेस बाय एंड सेज यू लुक प्रिटी और योर आई लव योर ड्रेस, आई थिंक इट मेक्स आवर डे. चलो यार, लेट्स गेट इनटू इट. हम खेल रहे नेम प्लेस मूवी थिंग. आई एम गोइंग टू गिव यू वन लेटर. ये चार कैटेगरीज आपको बतानी है 5 सेकंड के अंदर अंदर, ठीक है?
3: Okay,
1: पहले गिव मी अ फीलर, हाउ गुड आर यू एट बॉलीवुड एंड हाउ गुड आर यू एट द गेम?
3: गेम आई शुड बी गुड बिकॉज आई क्वाइट ऑफन प्ले विद माय चिल्ड्रन विद माय डॉटर एंड बॉलीवुड आल्सो आई शुड बी एवरेज आई थिंक, नॉट वेरी परफेक्ट बट.
1: चलो ठीक है, आई विल स्टार्ट विद अ रिलेटिवली इजीयर लेटर फॉर यू, फिर थोड़ा डिफिकल्ट करेंगे. ओके चलो, द लेटर आई एम गिविंग यू राइट नाउ इज द लेटर जी. जी से आपको बताना है मुझे बॉलीवुड सेलिब्रिटी का नाम. गो. कम ऑन, ये क्या किया यार? जी से बहुत सारे गोविंदा बोल देते.
3: गोविंदा,
1: क्या कर रहे हो यार? टीना मेन कैरेक्टर से साइड कैरेक्टर क्यों बन रहे हो? चलो ठीक है, अब जी से बताओ बॉलीवुड मूवी का नाम. जी से बताओ प्लेस. ओ गॉड टीना, इतना गंदा फेल हो रहे हो आप टीना, इजी राउंड में ही नहीं कर पा
3: रहे. आई हैव बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप इन गुजरात एंड आई कुड नॉट से
1: यू. यू सेड यू प्ले दिस गेम एवरी डे, मतलब आपके बच्चे रोज जीतते हैं आपसे.
3: नहीं, मैं उनसे जीतती हूं, सर मेरी कॉन्फिडेंस विद देम.
1: चलो चलो एक काम करते हैं, और भी इजी लेटर देती हूँ आपको. ओके, इससे अगर नहीं बताया ना टीना मैं कट्टी हो जाऊंगी आपसे. ओके, द लेटर आई एम गिविंग यू इज द लेटर एस. एस से आपको मुझे बताना है सेलिब्रिटी का नाम. गो.
3: सायरा बानो.
1: वेरी गुड, अब एस से बताओ मूवी का नाम.
3: साथ तेरे.
1: है साथ तेरे. What? You're just making stuff up. चलो I'll give it to you, Sadhya. Okay. अब S से बताओ प्लेस. टीना आप ना शारजा जाओ और शारजा से वापस मत आना.
3: I was just looking into the Indian map, you know, in my imagination. And I did not think about Sharjah.
1: Oh my God. S से बताओ thing. आपको ना कॉल नहीं करना चाहिए था टीना. टीना एक काम करते हैं, आपके साथ चुपचाप रॉक पेपर सीजर खेलते हैं. ये गेम तो आप बहुत बट यू आर सच अ स्पोर्ट यार टीना, आपसे बात करके बहुत मजा आया. गेम में चाहे तो आप फ्लॉप क्यों ना रहे हो. चलो एक काम करना, घर जाना, अपने बच्चों के साथ प्रैक्टिस करना और मुझे नेक्स्ट वीक कॉल करना, ठीक है? डोंट फॉरगेट, यू आर प्रॉमिसिंग मी नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू टेक यू ऑन एयर अगेन.
3: चलो
1: ओके टीना, हैव अ ग्रेट डे, बाय. इसको बोलते हैं डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर. नाम सुन के ऐसे लगा मेन कैरेक्टर होंगी, लेकिन खेला इन्होंने शक्ति कपूर से भी खराब है. बट नो प्रॉब्लम, इफ यू थिंक यू कैन प्ले ऑल यू हैव गॉट टू डू इज कॉल मी 800-1062 पे. और अगर नहीं भी खेल सकते यार, मजे आपको डेफिनेटली आएंगे.

0: मिला नहीं, मिला नहीं। और जमीन भाई पसारे बोल रही थी कि हाउस मार्क कि तू मुझे मिला नहीं। ऐसा लगा था जैसे प्रिया के प्यार का पैराशूट भी स्लो स्लो स्लो।
1: बिग 106.2 द बिग मिक्स ब्रॉट टू यू बाय insurancemarket.ae
2: insurancemarket.ae. This summer, drive home your dream SUV with Jetour's unbeatable offers. Enjoy VAT on us or 0% interest, a free service package and a 1 million kilometer warranty. With EMI starting from just 966 dirhams per month, your dream SUV is closer than you think. Visit Jetour showrooms across Abu Dhabi, Dubai, Ajman and Al Ain today. Jetour UAE, part of Elite Group Holding. Terms and conditions apply.
1: The Big Mix miss kiya gaya.
3: तुम कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते हो।
4: बचपन में क्या बनना चाहती थी हिना?
5: बचपन में बहुत कुछ था, एयर होस्टेस बनना चाहती थी, पता नहीं क्या क्या बनना चाहती थी।
4: और क्या बड़े होके क्या बन गए हो?
5: एचआर।
4: कॉर्पोरेट की दुनिया के हिमेश रेशमिया हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आपने बताओ कभी अपने एम्प्लॉयज को ऐसा स्पीच देने का की नौबत आई कि नोबडी रिमेंबर्स द मैन हु केम सेकंड, एवरीबॉडी रिमेंबर्स द मैन ओनली हु कम्स फर्स्ट। सिर्फ नील आर्मस्ट्रांग को याद करते हैं लेकिन चांद पे दूसरा आदमी, ऐसा कुछ दिया आपने कभी स्पीच
5: इस टाइप का? बट दूसरे मोटिवेशनल स्पीचेस बहुत देने पड़ते हैं।
4: वाओ, सो यू आर लाइक प्रैक्टिस्ड इन द आर्ट ऑफ मोटिवेशनल स्पीकिंग। तो चलो आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर टाइम राइट नाउ, 30 सेकंड्स, यू गॉट टू मोटिवेट मी। Okay, what would you say?
5: Oh my God.
4: Come on, go for it.
5: I mean, what should I say? You are already so motivated. We get motivated by you, by listening to you in the morning.
4: क्या बात है, मतलब कान ऐसे पकड़ के सीधा, मतलब उल्टा मोटिवेशन दे दिया यार। You are really good at your job, Hina. I am sure lots of people tell you on a daily basis. लेकिन उनमें से 9 में से 10 लोग मक्खन मार रहे होते।
5: मालूम है, यही चलता है।
1: Cheer your midday mood Monday to Friday, 1 to 5 PM. The Big Mix with Zohra. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
6: Quick look on the roads. Traffic बहुत ज्यादा heavy मिलेगा E311 Sheikh Mohammed bin Zayed Road पे heading towards Sharjah. Muhesna 4 से शुरू होता हुआ going towards Al Ghisais Industrial Area 5. About a 22 to 25 minute delay expected on that road. DD9 Khawaneed Street पे heading towards Mushrif. एक car accident की वजह से आपको मिलेगा 5 से 6 minute का delay. उसके अलावा थोड़ा सा traffic आपको मिल जाएगा DIFC के पास Sukuk Street के पास light से moderate traffic 5 से 6 minute का वहां पर भी delay. Any other traffic update, you can let us know on our WhatsApp 054-309-1062.
1: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsuranceMarket.ie.
1: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
2: बहुत. मैं अपनी फेवरेट हूँ.
3: ये है ज़ोहरा on the Big Mix on Big 106.2, the beat of Bollywood.

मैं मर जावां, जैस्मिन सैनलेस। क्या यार, इतना ड्रामेटिक नहीं होना चाहिए लाइफ में। यार नहीं मिलेगा तो मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। नो नो नो, आई थिंक वी वर वे पास्ट ऑल ऑफ दैट, स्पेशली जेन ज़ी। इनको तो किसी की यार वार की नहीं पड़ी हुई। फिलहाल ऑन दैट नोट, इट्स 4:47 ऑन द बिग क्लॉक। मेरा यहाँ से जाने का वक्त हो चुका है, इट्स ऑलमोस्ट 5 PM। मेक श्योर गो फॉलो अस ऑन आर इंस्टाग्राम विच इज 106.2 बिग FM। शो अस ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट ओवर देयर। मेरी आवाज़, मेरा अंदाज अगर आपको पसंद आया हो, आप मुझे भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। ज़ोहरा अमीन इज माई हैंडल ओवर देयर। आई विल नाउ सी यू टुमारो आफ्टरनून 1 से 5 के बीच। अंटिल देन, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड टू बिग 106.2। दिस इज द बीट ऑफ बॉलीवुड। Yeah.

0: थे।
1: ये जो वक्त है ना यार, जो हम काट रहे हैं, ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
2: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 5:06।
3: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.

0: We have insured Dubai families since 1995. The kids we covered then have kids we cover now. Get health insurance from insurancemarket.ae.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Hanji, this is The Big Thrill. Main hoon Mansi. While you're heading back home, you're stuck in traffic jam. We jam here with the karaoke.
1: Karaoke.
2: अब यहाँ पे हम सिंगर्स नहीं ढूंढ रहे हैं, हम माहौल बनाने वाले ढूंढ रहे हैं। गाना आए या ना गाए, माय फंडा गाना चाहिए। बस इतनी कोशिश करना कि मेरी ऑडियंस यहाँ बैठी रहे। एंड आज का ट्रैक अगेन थैंक्स टू माय चैट जीपीटी के हिसाब से ये बहुत ही पॉपुलर है। हर दूसरा बंदा कैरियोके में ये गाना जरूर गाता है। मतलब बर्मन साहब का म्यूजिक है, किशोर कुमार की आवाज है। दिस इज वेरी इजी।

अगर आपने गेस कर लिया है, प्लीज मेरे चैट जीपीटी को झूठा मत ठहराना, उसने कहा था बहुत पॉपुलर है। 8001062 इज द नंबर टू डायल, एंड खाली गेस नहीं करना है, गुनगुनाना भी है। जो टैलेंट आपके बाथरूम तक ही सीमित है उसे बाहर लेकर आओ। आई एम गिविंग यू अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस योर टैलेंट दिल का दर्द कान तक। 8001062 इज द नंबर इफ यू गेस द ट्रैक एंड यू आर ऑल सेट फॉर द करियोकी। फिलहाल दर्शन रावल की आवाज।

0: Big. आप सुन रहे हैं Big 106.2, The Beat of Bollywood.
1: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
3: नमस्ते।
4: ओला।
3: अस्सलाम वालेकुम।
4: बोंजूर।
5: नी हाओ।
4: डिड यू नो, नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया। यस, इवन इफ यू टाइप इन जेंजी लिंगो। इंट्रोड्यूसिंग सिया, योर एआई असिस्टेंट एट selfdrive.ae। सिया हेल्प्स यू रेंट द राइट कार इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स, नो स्ट्रोलिंग। विजिट selfdrive.ae। सिया इज वेटिंग टू असिस्ट यू।
0: The Big Jill.
6: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
7: Slow moving traffic. If you're on the Sheikh Mohammed bin Zayed Marif to Muhesna, it's going to take you 27 to 30 minute delay. Kafi patchy traffic at route par. There's also traffic near Festival City, Umramool. Heavy traffic, in fact, near Rashidiya. Plus, Sheikh Zayed pe filhal dikha raha hai 22 minute ka delay. But ye to bas shuruaat hai. Aage aage dekho hota hai kya. Traffic going from Furjan all the way towards Discovery Garden and Waisa Waisa looks a bit patchy. There is not much traffic on the Hesse Street. Thoda bahut milega agar aap ja rahe hain towards Circle Mall and JVC. Anything else you'd like to report, mujhe bataiye 800-1062 pe.
0: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
8: Are you kya?
9: Yeah.
10: Kaategi kya?
8: एक मिनट।
0: Big 106.2, The Beat of Bollywood.

0: भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, बस एक
1: उठी बाबा। 106.2 The Beat of Bollywood.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, you have Big Thrill, I'm Mansi, and every single evening while you're heading back home, we jam. I'm talking about the karaoke, and filhal joining us is Waseem, jo kafi serious hai, ya to inke boss inhe bahut pressure dete hain, ya ye logon ko pressure dete hain at work. To kya kahani hai?
2: Nahi, kahani hai, just had a meeting with my boss.
1: हाँ,
2: अभी तो रिलैक्स
1: हो। ये बॉस ने प्रेशर दिया है जो ये ऐसा माहौल एकदम गुलाम अली साहब का बना रखा है यहाँ पे। कैसी रही मीटिंग बॉस के साथ?
2: सेल्स के बंदे हैं तो प्रेशर वाली मीटिंग होती है हमारी।
1: हाँ, वो लग ही रहा है आपकी आवाज से, पर कोई बात नहीं, अभी आप दूसरों को प्रेशर दीजिए अपनी आवाज से। फिलहाल आप शौक रखते हैं गाना वाना गाने का?
2: हाँ, मगर आता नहीं है, लेकिन शौक तो बहुत।
1: हाँ, बस गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। आपने गाना पहचान लिया जो ट्रैक मैंने आपको सुनाया था?
2: आपने बोला है ना बाथरूम सिंगर ऑल आउट, सो मैंने बोला चलो।
1: हाँ हाँ, मेरा तो ये सेगमेंट ही फॉर बाथरूम सिंगर्स है, क्योंकि देखो मैं ना बाथरूम सिंगर हूँ और मैं कहीं भी गा लेती हूँ, बट मैं गाती अच्छा नहीं हूँ, पर मैं गाना रोकती नहीं हूँ।
2: हाँ, गाना तो मैंने पहचान लिया।
1: आवाज तो आपकी बहुत अच्छी है, मुझे लगता है आपकी इंटेंसिटी एंड आपका टैलेंट दिखेगा यहाँ पे। तो विदाउट फर्दर अडू, वसीम जो अभी अभी अपने बॉस का बहुत प्रेशर लेकर आ रहे हैं, हमें सुनाएंगे।
2: शाम मस्तानी मद हो

0: लिए जाए, थोड़ा सुर ऊपर चला गया आपका, लगा नहीं है. बट यार वसीम, आपने कहा था कि आप अच्छा नहीं गाते हो, सुर में तो गाया है आपने.
1: टाइम लगा है कॉल मेरा.
0: हाँ तो अच्छा ही गाया आपने, ऐसा भी नहीं हुआ कि मतलब यहाँ पे मुझे हेडफोन्स निकालने पड़े, तो आपने अच्छा ही गाया है. ये है कि थोड़ा ऊपर खींच लिया था तो वो बाहर ही निकल गया. फिलहाल मजा आया नहीं आया?
1: मजा आया.
0: तब गाते नहीं हो क्या वैसे जनरली, जहाँ ज्यादा प्रेशर दे बॉस गाना शुरू कर दिया करो.
1: हमारी फैमिली हम लोग जमा होते हैं तो दो तीन लोग हैं जो हम गाते हैं, तो मैं तो माइक ले लेता हूँ गाने के लिए. लोगों को पसंद आया नहीं आया, I'll go for it.
0: Absolutely, that should be the attitude. If you like singing, you should not care whether the other person likes or not. You should just sing. That's how it is. Yeah. कोई और enjoy करे ना करे, उसे हमें क्या करना. But आपने बहुत अच्छा गाया वसीम. Thank you so much. And boss का pressure जो है वो office ही छोड़ के घर जाओ अभी. बीवी का प्रेशर लो, ठीक है? चलो बाय. Well, अगर आपको लगता है कि आप भी गा सकते हैं, मतलब वसीम ने तो कहा था कि मैं गाता नहीं हूँ, फिर भी काफी अच्छा गा लिया. बट अगर आप बेहतरीन बाथरूम सिंगर हैं, then I'm looking for you. If you want to sing this song, you want to do karaoke, feel free to give me a call on 800-1062.
2: Karaoke. Beat 106.2. Fast track song of the hour. Brought to you by selfdrive.ae.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: यहाँ पे माहौल बना रहे हैं हम, कारियोके कर रहे हैं व्हाइल यू गेटिंग बैक होम आफ्टर लॉन्ग टायरिंग डे. बॉस का प्रेशर, टारगेट का प्रेशर, सारे प्रेशर साइड में रख के हम लोगों के गानों को प्रेशर देते हैं अपने गानों से. आई एम जस्ट किडिंग, वी आर जस्ट relaxing, we are singing, it is so therapeutic. And someone who I feel is a brilliant singer, because Hassan kept calling, right Hassan?
2: Well, I'm not a brilliant singer, I just knew the song.
1: You have a brilliant voice. I'm sure I'm not the first one to compliment you on your awaz.
2: Oh, how nice of you to say that.
1: Am I the first one?
2: Yeah, actually you are.
1: Nahi, aapki awaz badi achhi, kabhi nahi gaya kisi ladki ke liye.
2: Not really.
1: अच्छा चलो, आज आपको मौका देते हैं. लड़की मैं हूँ और गाना आप गाएंगे. क्या कहते हैं हसन आप?
2: मैं इंजीनियर हूँ.
1: Oh, very nice. Are you studying or you working?
2: I'm working.
1: Very good. तो इंजीनियर्स यूजुअली अपने प्रोफेशन के अलावा सब कुछ करते हैं, तो क्या आप अपने प्रोफेशन में ही हैं?
2: जी हाँ, जी हाँ.
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो गाना गाने का शौक रखते हो आप?
2: थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं.
1: मुझे बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस है आपसे. एक तो मैं पहली लड़की हूँ जिसके लिए आप गाओगे, तो चलो जी शुरू करते हैं. चलिए हसन साहब.
2: ये मस्तानी मद होश किया जाए, मुझे डोर कोई पीछे तेरी ओर लिए जाए. बात जब मैं करूं मुझे रोक देती है क्यों. बस इतना ही आता
1: है. बात जब मैं करूं मुझे रोक देती है, इसके लिरिक्स है
2: शायद.
1: या आपने मन से बनाया और मैंने आपको बिल्कुल भी नहीं रोका, अगर आप ये हिंट मुझे दे रहे थे तो.
2: ओके ओके,
1: लिरिक्स गड़बड़ हुए बट हसन गाया आपने ठीक ठाक, बुरा नहीं. आप ये शुरू कर सकते हो लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए गाना गाना.
2: ओह रियली, थैंक यू थैंक यू.
1: मैं हो गई हूँ थोड़ी थोड़ी इम्प्रेस.
2: That's so nice to know.
1: But not bad at all. From a non-singer to coming here and singing, it was not bad at all.
2: जी हाँ, आपने इनका इतना encourage किया है मुझे कि अब तो करना पड़ेगा.
1: हाँ, but अगर अंडे पे टमाटर पड़े तो मुझे नहीं बोलना, ठीक है? मैं तो बस आपकी आवाज से impress हो गया बोल रही हूँ. And assume कर रही हूँ कि हसन single है.
2: No, I'm married.
1: अरे तो फिर क्यों इतनी तारीफों के पुल बंधवाए अपने? ये क्या है?
2: No, actually, मेरी वाइफ है नहीं ना आस पास
1: नहीं है तो इट्स ओके, बट है ना, दैट शुड बी इम्पोर्टेंट. बट गाया आपने बहुत अच्छा हसन, बड़ा मजा आया.
2: थैंक यू.
1: बाय. दिस इज व्हाट वी डू एवरी सिंगल इवनिंग, वी सिंग, वी जैम. एंड इफ यू वांट टू सिंग, यू आर इनटू कैरियोके, गिव मी अ कॉल 800-1062 पे. इनफैक्ट आप रजिस्टर कर सकते हैं 0543-09-1062 पे.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 6:05।
2: Bollywood.

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsuranceMarket.ie.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Hanji, this is The Big Thrill. I'm Mansi. We're playing the 5-second rule. Joining us is Imran, who... हमको किसके गम ने मारा. क्यों दुखी हो इमरान?
3: जी जी नहीं नहीं दुखी क्या, बस मौसम ही ऐसा इतना हॉट है.
2: मौसम हॉट है तो दुखी होने का थोड़ी ना है.
3: चलें, कैसी हैं आप?
2: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो?
3: हम भी ठीक है, अल्लाह का शुक्र.
2: कैसे चल रहा है काम?
3: बस सेवन
2: सेम है, मतलब मजा आ रहा है नहीं आ रहा है?
3: हाँ जी, ऑफ कोर्स.
2: अच्छा, करते क्या इमरान?
3: सैलरी मिलती है तो मजा आता है.
2: सैलरी मिलती तभी मजा आता है, बाकी दिन बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है. करते क्या हो इमरान आप?
3: साइट इंजीनियर हूं एज एडवर्टाइजिंग कंपनी.
2: क्या
3: एडवर्टाइजिंग कंपनी में?
2: ये तो जिस एंथुजियाज्म से आपने बोला है ना, मुझे लग नहीं रहा है कि आपको मजा आ रहा है वहाँ पे.
3: नहीं नहीं मजा आ रहा है.
2: कौन परेशान कर रहा है? बहुत अच्छे हैं आपके कि नहीं है?
3: नहीं अच्छे हैं.
2: समझ गई, मैं समझ गई. चलो छोड़ो फिलहाल, हम ये मजेदार गेम खेलेंगे. इसका नाम है 5-second rule. आपको मिलेंगे 5 सेकंड. मैं आपको दूंगी कुछ कैटेगरीज, तीन चीजें आपने बतानी है हर कैटेगरी से 5 सेकंड के अंदर. फटाफट खेलने वाला ये गेम है. तैयार हो आप?
3: जी जी.
1: 5-second rule.
4: Oh yeah.
2: तीन बॉलीवुड एक्टर्स जिनका नाम आर से शुरू होता है, लेटर आर. अरे चले गए, ये तो पहले ही सवाल में गायब हो गए लगता है. डर गए कि नहीं खेल पाएंगे. अगर आपको लगता है आप कर पाओगे 5 सेकंड के अंदर, ऑल यू नीड टू डू इज गिव मी अ कॉल 800-106-2 पर.

0: 101.2, the beat of Bollywood. Wow, your hair color looks stunning.
1: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
0: Yeah, right.
1: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia free and enriched with henna extract and argan oil.
0: Really?
1: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
0: I'm buying it right now.
1: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
2: Namaste.
3: Hola.
2: Assalamualaikum.
4: Bonjour.
5: Ni hao.
4: Did you know? Now just type and rent a car with Sia. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
0: The Big Chill.
6: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. The Big Mix. Miss kiya gaya?
7: Inkar hi nahi sakte. Chaho bhi to nahi kar sakte ho.
8: Bachpan mein kya banna chahti thi, Hina?
9: Bachpan mein bahut kuch tha. Air hostess banna chahti thi. Pata nahi kya kya banna chahti thi.
8: Aur bade hoke kya ban gaye ho?
9: HR
8: कॉर्पोरेट की दुनिया के हिमेश रेशमिया हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आपने बताओ कभी अपने एम्प्लॉयज को ऐसा स्पीच देने का की नौबत आई कि नोबडी रिमेंबर्स द मैन हु केम सेकंड, एवरीबॉडी रिमेंबर्स द मैन ओनली हु कम्स फर्स्ट। सिर्फ नील आर्मस्ट्रांग को याद करते हैं लेकिन चांद पे दूसरा आदमी, ऐसा कुछ दिया आपने कभी स्पीच
9: इस टाइप का? बट दूसरे मोटिवेशनल स्पीचेस बहुत देने पड़ते हैं।
8: वाओ, सो यू आर लाइक प्रैक्टिस्ड इन द आर्ट ऑफ मोटिवेशनल स्पीकिंग। तो चलो, आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर टाइम राइट नाउ, 30 seconds, यू गॉट टू मोटिवेट मी। ओके, व्हाट वुड यू से? कम ऑन, गो फॉर इट।
9: आई मीन, व्हाट शुड आई से? यू आर ऑलरेडी सो मोटिवेटेड, वी गेट मोटिवेटेड बाय यू, बाय लिसनिंग टू यू इन द मॉर्निंग।
8: क्या बात है, मतलब कान ऐसे पकड़ के सीधा, मतलब उल्टा मोटिवेशन दे दिया यार। यू आर रियली गुड एट योर जॉब हीरा। I am sure lots of people tell you on a daily basis. लेकिन उनमें से 9 में से 10 लोग मक्खन मार रहे होते हैं।
9: मालूम है, यही चलता है।
0: Cheer your midday mood Monday to Friday, 1 to 5 p.m. The Big Mix with Zohra. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood.
10: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
11: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: Big weather update brought to you by Alras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
12: 36 degrees outside, low tiger on 33. Humidity काफी है आज फिलहाल 73% पर।
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहे है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, yeah, Big Thrill. We are playing the 5-second rule and joining us is Suno Aisha. Maine movie dekhi nahi, Aisha, aapne dekhi hai?
2: Yes, देखिए
1: अच्छी लगी आपको. आप भी करते हो मैच मेकिंग अपने ग्रुप में?
2: हाँ, कभी कभी कर लेते हैं.
1: अरे वेरी नाइस. अभी तक कुछ मिली है सक्सेसफुल रिलेशनशिप स्टोरीज?
2: बहुत सारी खुद की स्टोरीज है.
1: अरे वेरी नाइस. वो सुनाई दे रहा है खुद की जो की है मामा मामा पीछे से.
2: Yes, I have one baby.
1: Yeah, I can hear your baby. मेरे लिए भी ढूंढ दो यार आयशा.
2: मैं दुआ करूंगी और दुआ तो हर किसी को लग जाए.
1: So sweet, so sweet. But यार आयशा, we'll play the 5-second rule. It's a fun game. आपको मिलेंगे 5 सेकंड. मैं आपको दूंगी कुछ कैटेगरीज, तीन चीजें बतानी है 5 सेकंड के अंदर. ठीक है? All the very best.
2: Okay.
0: 5-second rule.
3: Oh yeah.
1: Name 3 things that are white in color and you can eat.
2: Egg.
1: Okay.
2: आइसक्रीम.
1: अरे रे रे रे रे रे, 5 सेकंड फटाफट खेलने वाला गेम है ये.
2: बनाना शेक.
1: हो गया टाइम 5 सेकंड. आयशा फटाफट, यू टू बी वेरी क्विक. 3 सलमान खान की मूवीज.
2: हम दिल दे चुके सनम.
1: और अरे रे रे रे रे, फिनिश.
2: टाइगर.
1: दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे. मैं वो ते ही नहीं यार. 5 सेकंड फटाफट. 3 ऐसी चीजें जो सिर्फ और सिर्फ बीच पे मिलती हैं.
2: बीच पे पानी.
1: हाँ, और
2: ड्रेस. और
1: अरे रे रे रे रे रे, 3 ऐसी चीजें जो आपको अपने शौहर के बारे में बहुत अच्छी लगती हैं.
2: अब वो मुझसे कुछ पूछते नहीं है, अच्छे हैं और एहसास करते हैं.
1: ये देखो, ये जवाब 5 सेकंड के अंदर आ गया. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. टच वुड, काला ठीक नजर ना लगे. 3 बॉलीवुड मूवीज जिनके टाइटल में दिल आता है.
2: दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे.
1: शुक्र है. और
2: दिल दे चुके सनम.
1: हम दिल
2: वाले.
1: ओ आयशा,
0: 5 सेकंड रोल.
1: फिर शौहर वाला, मियाँ जी वाला जो जवाब है ना आपने 5 सेकंड के अंदर दिया, बाकी तो सब बाहर थे टाइमर के. फिलहाल मजा आया कि नहीं आया?
2: बहुत आया. उनके साथ टाइम जो सब स्पेंड करते हैं.
1: हाय, सो स्वीट, सो स्वीट. मेरे लिए ना अपने वाले जैसे ढूंढना. ठीक है,
2: इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगी, जरूर मिल जाएगा. आपसे मुझे खुशी हुई आपसे बात करके.
1: मुझे भी.
2: अपने भाई के साथ ही.
1: हाँ,
2: तो इसने फॉरन उन्होंने कॉल की तो मुझे बहुत अच्छा लगा.
1: अपने भाई को भी हाय बोलिएगा मेरा. ठीक है, चलिए, हैव अ ग्रेट इवनिंग. बाय
2: बाय.
1: या 5 सेकंड रूल मैंने कहा ना, इट साउंड्स वेरी वेरी इजी, पर इतना आसान है नहीं. अगर आपने ट्राई करना है, कॉल करो 800-1062 पे.
0: Big 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: गाना वैसे पर्दा फाश कर रहे हैं। इस गाने में ऑफकोर्स गौहर खान थी, उनके मियां जैद दरबार इन द रियलिटी शो अलायंस। आई एम समवन हु लव्स रियलिटी टीवी एंड ऑफकोर्स द ड्रामा। इनफैक्ट एक बड़ी अच्छी रिसर्च है जो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। जो लोग बहुत कलेश देखते हैं ऑन रियलिटी शोज, वो रियल लाइफ में बहुत नॉन कॉन्फ्रंटेशनल, बहुत ही काम जेन लाइक होते हैं। गुरु रंधावा के पास कमिंग अप इन जस्ट अ बिट, वी आर आल्सो प्लेइंग द 5 सेकंड रूल। मजेदार गेम है, आपने खेलना है तो 800-1062 इज द नंबर टू डायल।
1: एक बार ही किया तो यार प्यार क्या किया, एक बार ही किया तो यार प्यार क्या किया।
0: सही बात है, आज के जमाने में प्यार प्यार नहीं, बुखार है, फ्लू है, हर सीजन में वापस।

0: मेरे बॉयफ्रेंड से बुलू बुलू करेगी तो धपकेंगी ना उसको।
1: ये है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, I'm Mansi with The Big Thrill. We're playing the 5-second rule and ab aa gaye hain Jameel. Hi.
2: Hi.
1: कैसे हैं जमील आप? कैसा रहा आपका आज का दिन?
2: हाँ, बढ़िया था. ट्यूजडे मंडे जैसा ही गुजरा है.
1: ऐसा क्या हुआ जो ट्यूजडे मंडे जैसा गुजरा है? टारगेट्स पूरे नहीं हुए?
2: टारगेट्स मार्केटिंग में, वो भी सोशल मीडिया.
1: यार, सोशल मीडिया और मार्केटिंग वालों के तो हाल खराब है. मतलब सबसे थैंकलेस जॉब है. मेहनत बहुत है बट अप्रिसिएशन जीरो सी है ना.
2: प्रोडक्ट थोड़ा बोरिंग जैसा है. वो ऐसा प्रोडक्ट है जो हर कोई यूज करता है बट कोई उतना जानता
1: अच्छा,
2: नहीं.
1: बट क्लाइंट आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि वायरल रील बना दो.
2: यस.
1: ये देखो ना,
2: ये होता है ना,
1: ये तो सबके साथ हो रहा है. वो है ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, वही हाल चल रहा है फिलहाल. जमील, विल प्ले द 5-second रूल. इट इज अ फन गेम. आपको मिलते हैं 5 सेकंड. मैं आपको दूंगी कुछ कैटेगरीज, 3 चीजें बतानी है 5 सेकंड के अंदर. ऑल द वेरी बेस्ट.
0: 5-second रूल.
3: ओह यस.
1: क्विकली नेम 3 मूवीज जिसमें करिश्मा कपूर थी.
2: बीवी नंबर 1,
1: और
2: नंबर 1.
1: ओके,
2: राजा नंबर 1.
1: कौन सी नंबर 1?
2: राजा.
1: राजा नंबर 1. ऐसी कोई मूवी नहीं है, टाइम भी खत्म हो गया है. राजा नंबर 1. ये सारे ना आप अपने क्लाइंट्स को बनाया करो. मनगढ़ंत कहानियां मुझे नहीं. 3 थिंग्स दैट आर येलो इन कलर यू कैन ईट.
2: बनाना
1: और
2: पेयर.
1: नाइस. टाइम खलास, फटाफट. 3 थिंग्स दैट यू फाइंड ओनली एट एन एयरपोर्ट.
2: लाउंज.
1: 5 सेकंड. फटाफट फटाफट, यू हैव टू बी वेरी क्विक. ट्रीट इट लाइक अ डेडलाइन. मैंने कहा ना मुश्किल है. 3 बॉलीवुड गाने जिनमें दिल आता है.
2: दिल दे के जल्दे दिल, दिल का एंड दिल रुबा.
1: 3 ऐसी चीजें जो आपको अपने क्लाइंट्स के बारे में बिल्कुल ना पसंद है.
2: टाइम से टाइम के बाद उनके चेंजेस आना, और आधी रात को कॉल जाना, और पेमेंट टाइम पे नहीं आना.
1: बहुत बढ़िया, तीनों ही बहुत ही अच्छी चीजें और ऑन पॉइंट है. बट आपने टाइम पे नहीं बताई.
0: 5-second rule.
3: Oh yeah.
1: तो पर आप, are you working for some company या फिर you have your own agency?
2: No, I'm working for a company and I'm freelance as well.
1: तो ये क्लाइंट्स डायरेक्टली क्यों कॉल कर रहे हैं तुमको आधी रात को? D&D पे लगाओ ना उन्हें.
2: करना पड़ता है क्योंकि मल्टी टाइम जोन पे रहते हैं लोग, तो इसीलिए बस.
1: सही बात है. आई एम जस्ट गोइंग टू प्रे दैट दिस मंथ एंड यू गेट लाइक नाइस डिसेंट नॉन ड्रामेटिक क्लाइंट्स. चलो जी, आपने खेला तो बहुत खराब बट मजा आया होगा. जमील, हैव अ ग्रेट इवनिंग एंड थैंक यू सो मच.
2: वेलकम.
1: बाय. ये 5-second रूल मैंने कहा ना, अभी जमील ने खुद कह दिया कि बहुत मुश्किल है ये. 800-1062 इज द नंबर टू डायल अगर आपने खेलना है.

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
1: Good evening. Yeah, Big Thrill, Mansi. And this research, which I absolutely love, which says that people who watch reality TV dramas are the most polite, patient, and harmless people. Because they don't have emotional outrage. इसलिए वो टीवी पे ये सारी फाइट्स ये सब कलेश देखते हैं. इफ समवन ट्राइज टू पिक एन आर्ग्यूमेंट विद अ पर्सन हु इज अ रियलिटी टीवी फैन इन रियल लाइफ, दे वोंट इवन फाइट बैक. दे'ल जस्ट लुक बैक एट यू एंड दे'ल स्माइल एंड नॉट. दे आर द मोस्ट काम एंड पेशेंट पीपल अराउंड. डू यू अग्री विद दिस रिसर्च? लेट मी नो. क्या आप रियलिटी टीवी देखते हैं या फिर आप किसी को जानते हैं जो बहुत ज्यादा रियलिटी टीवी शोज देखता है बट बहुत ही शांत है? 800-1062 इज द नंबर टू डायल.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 7:08।
2: Bollywood.

0: You are just one call away from your dedicated claims manager. Get car insurance from insurancemarket.ae. Call 800-ALFRED 24/7.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Good evening, this is The Big Thrill, Mansi, and we're talking about this big research on people who watch reality TV drama. Filhal Subhash, hi, good evening.
3: Good evening.
2: Kya hal chal hai sir aapke?
3: Yaar, office se ghar ja rahe hain wapas.
2: Achhi baat hai na, ghar ja rahe ho, finally ho gaya, din khatam.
3: Din khatam, lekin kaam khatam nahi hua hai na.
2: Achha, ghar ja ke bhi kaam karna padta hai.
3: Arre, yaar, mat dilao.
2: करते क्या हो आप ऐसा कि ऑफिस से घर जाने के बाद भी ऑफिस का ही काम करते हो?
3: यार हम पेमेंट कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, सब जब जाके कोई भी मशीन पे कार्ड टैप करते हैं ना,
2: ओ
3: 24/7 काम चलते रहता है हमारा, कंप्लायंस है।
2: समझ मुझे कुछ नहीं आया, बट मुझे समझ में आ गया कि आप बहुत इम्पोर्टेंट काम करते हैं। फिलहाल सुभाष, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, आप रियलिटी टीवी शोज देखते हो?
3: कोई भी नहीं देखता हूँ, मेरी बीवी सब कुछ देखती है, कोई भी नहीं देखता हूँ।
2: तो ये रिसर्च ही कहती है, जो लोग रियलिटी टीवी शो देखते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ड्रामे, बहुत कलेश होते हैं, वो रियल लाइफ में बहुत पेशेंट होते हैं और बहुत ही ड्रामा फ्री होते हैं। तो आपकी बीवी देखती है, तो मुझे बताओ क्या वो जिंदगी में बहुत ही काम, बहुत ही पेशेंट है?
3: कुछ रिसर्च में गड़बड़ हुआ है, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा भी रियल है।
2: तो मतलब नहीं है वो शांत स्वभाव की?
3: अरे ऑन एयर ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ ना थोड़ा।
2: तो मतलब यू डिसएग्री विद द रिसर्च बिकॉज योर वाइफ वॉचेज अ लॉट ऑफ रियलिटी टीवी, तो शी इज हैज जीरो पेशेंस, शी इज ड्रामेटिक।
3: उतना मत बोला करो, घर जाके खाना खाना
2: होगा। बट यार मैं खुद बहुत रियलिटी टीवी देखती हूँ, अब आप जो है मुझे सुनते हो, आपको लगता है कि मैं ड्रामेबाज हूँ, मैं कलेश करने वाली हूँ कि नहीं, मैं बहुत शांत? क्या हाँ,
3: इंडस्ट्री में काम करते हो तो थोड़ा ड्रामा तो बनता है।
2: मैं बहुत शांत स्वभाव की लड़की हूँ, सुशील, सुंदर, शांत।
3: नहीं नहीं, होने तो लगते नहीं है।
2: यार
3: सच बोलना आता है बस।
2: नहीं यार ऐसा भी नहीं है, अभी आप शुरू करो उसके साथ देखना रियलिटी टीवी, तो शायद आपको पता चलेगा कि ये रिसर्च सही है कि नहीं है।
3: ओके ओके, सो दिस इज द लॉजिक, शांत होने के लिए मैं रियलिटी टीवी।
2: बिल्कुल डिसअपॉइंट हो गई हूँ मैं, तो इतना अच्छा फील कर रही थी अपने बारे में कि हाँ मैं एकदम नॉन ड्रामेटिक लड़की हूँ।
3: अरे ड्रामेटिक होना भी गलत नहीं है वैसा।
2: तो आपको अच्छा लगता है लड़कियों में ड्रामा?

बोलो अच्छा लगता है तभी तो शादी करके लाया हूँ एक के साथ। चलो सुभाष आराम से घर जाओ एंड आई होप कोई ऐसा मिले जिसे ये रिसर्च सही लगे, क्योंकि मुझे तो सही लगी है। बीवी हो सकता है आप घर पे ऑफिस का काम लाते हो ना, इसलिए ज्यादा ड्रामा करती हो क्योंकि आप टाइम नहीं देते हो, है ना, वो हो सकता है। डोंट ब्लेम द रियलिटी शोज। चलो यू हैव अ ग्रेट इवनिंग, थैंक यू, बाय। ये रिसर्च है जो कहती है कि अगर आप रियलिटी टीवी शोज देखते हो, रियल लाइफ में आप बहुत शांत, यू आर वेरी पेशेंट, यू नॉन कॉन्फ्रंटेशनल, यू आर अ ड्रामा फ्री पर्सन। डू यू अग्री विद दिस रिसर्च इफ यू आर अ फेलो रियलिटी टीवी ड्रामा व्यूअर? 800-1062 पे आप मुझे बता सकते हैं। देयर इज अ पोल अप ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज 106.2 बिग एफएम इट इज।

0: बिग आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
3: नमस्ते।
4: ओला।
3: अस्सलाम वालेकुम।
5: बोंजूर।
6: नी हाओ।
5: डिड यू नो? नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया। Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
7: It's hot it up with big tickets.
8: A guaranteed 20 million dirham grand prize.
7: 500,000 dirham winners and 1 million dirham big spin game.
8: Buy now at bigticket.ae.
9: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
0: The big mix. Miss kiya gaya?
10: कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते हो।
11: अनुक्षा, हाय। पहले तो मुझे बताओ अनुक्षा कि हाउ मेनी टाइम्स हैव पीपल मेस्ड अप योर नेम एंड कॉल्ड यू अनुष्का?
10: जिलियन टाइम्स।
11: बिकॉज़ दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम स्पीकिंग टू एनीवन बाय दिस नेम अनुक्षा। मुझे जेन्युइनली लगा कि आपने अपना ही नाम गलत बता दिया है मुझे। Because Anuksha is a very unique name. What does it mean?
10: It means perfect. Nooks in Hindi is false.
11: What an Anuksha irony. Means... Perfect naam ko imperfect tarike se 50,000 baar logo ne bula hoga. Anushka, Anushka karke.
10: I know. Tell me about it.
11: Mujhe abhi batao ki filhaal ye jo char clues maine diye the, kis actor ki baat ho rahi hai?
10: The one and only Vicky Kaushal.
11: Absolutely. Vicky Kaushal pasand hai aapko?
10: Love him.
11: Kisko nahi pasand hai yaar? Matlab, he's so charming.
10: So good.
11: So charming, hai na?
10: I love the way he respects women and the way he is with his wife.
11: Are you married to a Vicky Kaushal in real life?
10: Yes.
11: Oh my
10: much.
11: God, aapke Vicky Kaushal ka naam kya hai?
10: Sandeep.
11: Arre, so nice. Anuksha and Sandeep ki jodi. I hope aapki bhi Vicky aur Katrina ki tarah jodi bani rahe.
0: Cheer your midday mood Monday to Friday, 1 to 5 p.m. The Big Mix with Zohra. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
12: Hey, jaldi hata tera khada na. Chal hata.
13: Ha.
12: Jaldi hata.
0: Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
14: Alright, patchy traffic still. If you are on the Hesse Street, especially if you are going to Sports City, then there is a delay of 12 to 15 minutes delay there. Besides, not really bad, a little traffic, like a 12 to 15 minute delay on the Sheikh Mohammed bin Zayed. A 29 minute delay at the moment, if you are on Sheikh Zayed. It is packed near Fahidi, Karama, Mankool and Jafria side. Very slow moving traffic. Traffic is also a bit slow than the usual. If you are GBR ki taraf hain aur kuch aapne report karna hai, bata sakte hain 800-1062 pe.
0: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae. Big

0: पैदा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखे कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।
1: Big 106.2

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: फिलहाल ये खबर सबको लगनी चाहिए कि अगर आप गाड़ी रेंट पे लेना चाहते हैं, इफ यू नीड अ रेंटल कार एनी टाइम, देन सीआर फ्रॉम सेल्फ ड्राइव इज अवेलेबल 24/7. अंडरस्टैंड 40 लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग द जेन जी लिंगो एंड टेक्सटिंग. सो जस्ट सर्च एंड चूज एंड यू कैन बुक योर परफेक्ट कार इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स विद सीआर. सो आज ही ट्राई कीजिए, सीआर की हेल्प लीजिए एट selfdrive.ae.
0: Big 106.2, Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: The Big Thrill with Nancy on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, यह है Big Thrill, Nancy, and of course आज ही के दिन डेब्यू हुआ था ऑन द बिग स्क्रीन जानवी कपूर का. Well, the movie was such a massive hit. Her debut was such a big hit. In fact, Karan Johar ने लॉन्च किया था एंड ये बहुत ही खूबसूरत मूवी का रीमेक था. मतलब काफ़ी रिस्की था इस मूवी को रीमेक करना क्योंकि जो ओरिजिनल मूवी थी वो ऑलरेडी बहुत बड़ी हिट थी. बट आई हैव टू से वॉट अ ब्रिलियंट डेब्यू बोथ जानवी एंड ईशान खट्टर. दे वर फैंटास्टिक इन दिस वन. 2018 में आज ही के दिन रिलीज हुई थी.
2: मैं थारे लिए एक दिन बहुत बड़ी कोठी बनाऊंगा.
3: बड़ी कोठी नहीं चाहिए, मैंने मारा घर चाहिए, अपना घर.
2: एक दो तीन चार. कैसे बताए क्यों तुझको चाहे आरा बता ना पाए. बातें दिलों की देखो जो बाकी.
1: आई हैव सीन द ओरिजिनल मूवी, आई हैव सीन दिस एंड बोथ द मूवीज आर वेरी इंटेंस, गिव्स मी गूज़बम्स. अगर आपको याद है ये कौन सी मूवी थी, आज ही के दिन रिलीज हुई थी 2018 में. ग्रेट म्यूजिक, अजय अतुल का म्यूजिक था जिन्होंने ओरिजिनल मूवी का भी म्यूजिक दिया था. अगर याद आ गया है तो मुझे बताओ 800-1062 पे.
4: जब चाहे तब

तो मुझे दिल मेरा पत्थर का ब्रेक नहीं कर सकती। गाने हेटरों के मुंह पे जाके बजे बूम, क्लियर है विजन मेरी यारो नीनो जूम। ऋतिक नहीं फिर भी मचेगी धूम, दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम।

0: baby दे देगा तभी तो बादशाह को कोई टेस्ट नहीं करता. I'm a hustler, A1, lifestyle A1. ऐ मुझे ना सिखाओ घंटे पे फेम, एक ही बस एम, जो जलते हैं उन्हें और जलाओ. हिटरों की छातियों पे रख दीवे बाल के टोर मरावा के तिछोरे करनाल के डैश अपनी दिल्ली से तेरा दून दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम.
1: अरे क्यों पड़े हो चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं.

0: 105.2 The Beat of Bollywood.
1: Hello.
2: कोई रोमांटिक गाना सुनाओ ना. हेलो, सुन रहे हो ना?
3: Hey,

0: बुड्ढे
1: नमस्ते।
0: पहले आप वादा कीजिए आप गुस्सा नहीं होंगे।
1: भला मैं क्यों गुस्सा होने लगा, आप बात बताइए।
0: मैं बात तो बता देती लेकिन मुझे डर है कि आपको गुस्सा आ जाएगा।
1: नहीं नहीं नहीं, आप तो खाम खा डर रही हैं। मुझे गुस्सा कभी आता ही नहीं।
0: गुस्सा आ जाएगा, सब आ रहा है, गुस्सा आ जाएगा,
2: गुस्सा आ रहा है। देखिए
1: ये गुस्सा नहीं है।
3: बिग 106.4

0: बॉलीवुड लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
1: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: 35 डिग्रीज, लो जाएगा अराउंड 33, वेरी ह्यूमिड टुडे, ह्यूमिडिटी फिलहाल 73% पर है।
2: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2।

0: estate deserves selfies, not stress. Fast claims, fair prices, real protection. For your travels, car, health, home, life or business, call 800-ALFRED.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Alright, we're celebrating Janvi's debut. साथ में ईशान खट्टर का ये ग्रैंड डेब्यू था, बट ईशान का डेब्यू इस मूवी से पहले हो चुका था. मूवी का नाम बियॉन्ड द क्लाउड्स था, एंड अगेन क्रिटिकली एक्लेम्ड मूवी थी, एंड आई थिंक हैज टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द मोस्ट इंटेंस बॉलीवुड डेब्यू ऑफ एनी स्टार किड और एनी किड फ्रॉम द फिटर्निटी. एंड करण जौहर की मूवी थी, उन्होंने कोशिश की थी एक आइकॉनिक मूवी को रिक्रिएट करना, बॉलीवुड वर्जन बनाना, बट आई हैव टू से ब्रिलियंटली एग्जीक्यूट किया था, क्योंकि ओरिजिनल मूवी अपने आप में ही एक आइकॉनिक मूवी थी, एंड उसे रिक्रिएट करना, बॉलीवुड वर्जन बनाना, बहुत ही कमाल काम किया है करण जौहर ने. फिलहाल ऑन द फोन लाइंस आई हैव सानिया. हाय सानिया. फिलहाल सानिया ही बोल रही हूँ मैं बार बार, आनिया. फिलहाल आनिया, do you remember the movie that I was talking about, released back in 2018 on this very day, Janvi's grand debut opposite Ishan Khattar?
3: Yes, the movie's name is Dhadak.
2: Absolutely correct. Do you remember the original Marathi movie jisse inspired thi Dhadak?
3: Yes, that's Sairat.
2: Sairat it is. Dono movie bahut hi intense thi. Do you remember watching this one in the theater?
3: Yes, yes.
2: So which one did you like more, Sairat or Dhadak? It's a tough question.
3: The original one.
2: Really? Are you from Maharashtra?
3: Yes.
2: Haan, tabhi, you know that feel of watching a Marathi movie. But for us non-Maharashtrians also, we loved Sairat. But I think so, Dhadak also was fantastic. Especially Dhadak ki ending zyada intense thi.
3: Yeah.
2: That last scene till date gives me goosebumps.
3: Yes, it was very intense.
2: Very intense. I did not expect that out of a Karan Johar, out of a Dharma movie, jo last scene tha.
3: Right.
2: ओरिजिनल मूवी में भी अजय अतुल ने म्यूजिक दिया था, इसमें भी. सो एनी फेवरेट्स फ्रॉम द बॉलीवुड वर्जन ऑफ सैरात व्हिच इज धड़क? झिंगार इज अ नाइस सॉन्ग. चलो लेट्स सेलिब्रेट जानवी एंड ईशान का डेब्यू विद झिंगाट राइट हियर. और ओरिजिनल में क्या गा रहा था, उसमें भी था ना ये गाना?
3: उसमें भी झिंगाट ही था उसका नाम.
2: अच्छा, तो उसमें क्या सी लाइन्स थी, जैसे इसमें नाचे जिंग जिंग जिंग जिंग, तो उसमें क्या था?
3: याद नहीं है.
2: चलो, विल प्ले द बॉलीवुड वर्जन. यू हैव अ ग्रेट इवनिंग आनिया. बाय
3: बाय.

0: फेवरेट ओरिजिनल गाना ऑफ रीसेंट टाइम्स कॉकटेल 2 से
1: द बिग थ्रिल विद मानसी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: ये गाना लॉन्ग ड्राइव और आपकी ब्रांड न्यू ड्रीम एसयूवी. यस, यू डोंट हैव टू ड्रीम एनीमोर. ड्राइव होम योर ड्रीम एसयूवी दिस समर विद जटॉज अनबीटेबल ऑफर्स, वैट ऑन देम और 0% इंटरेस्ट. देयर्स आल्सो फ्री सर्विस पैकेज इंक्लूडेड. 1,000,000 किलोमीटर की वारंटी है. ईएमआई स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 966 दिरहम्स पर मंथ. विजिट जटॉज शोरूम्स अक्रॉस अबू धाबी, दुबई, अजमान या फिर अलेन आजी. Jitor UAE, part of their lead group holding. Terms and conditions do apply, so definitely go and check them out.

कुछ मूवीज ना वक्त से पहले रिलीज हो गई हैं, ये उनमें से एक है एंड बहुत तारीफ सुनी है मैंने इस मूवी की, बट अनफॉर्चुनेटली मैं जिस मूवी की बात करती हूँ मैंने वो मूवी देखी नहीं होती है। 1998 में आई थी ये एंड दिस वॉज इंडियाज एंट्री फॉर द 1999 अकेडमी अवार्ड फॉर द बेस्ट फॉरन लैंग्वेज फिल्म। दीपा मेहता की 1947 अर्थ, आमिर खान, राहुल खन्ना, ब्रिलियंट स्टार कास्ट एंड ऑफकोर्स वेरी वेरी क्रिटिकली अक्लेम्ड नंदिता दास। ऑफकोर्स दीपा मेहता की मूवी है, साथ में शबाना आजमी। मुझे देखनी है, मेरी बहुत सारी मूवीज यू नो आर अ पार्ट ऑफ माय बकेट लिस्ट एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ अस कीप वेटिंग फॉर लॉन्ग वीकेंड्स व्हिच इज नॉट वेरी फार अवे, दो अगस्त में आने वाला है एक और लॉन्ग वीकेंड, तो ऑफिशियली काउंटडाउन जो है फॉर द लॉन्ग वीकेंड बिगिंस हियर। कीपिंग यू कंपनी, दिस इज द बिग थ्रिल मानसी कमिंग अप इन जस्ट अ बिट, ब्रेक योर स्पार। इश्क मिटाए हाय हाय निमाए मेरा इश्क, ये तो आपने अभी भी सुना है, गलत बटन दब गया मैं, बह गई थी भावनाओं में। आने वाला है ये गाना, ये गाना रीमेक हुआ, इट्स डन ब्यूटिफुली।

0: insuresmarket.ae. We have insured Dubai families since 1995. The kids we covered then have kids we cover now. Get health insurance from insurancemarket.ae.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
3: नहीं, ये तो मुफ्त है।
2: गुड, चलो फोन लगाओ।
1: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Nancy on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: आज ही के दिन डेब्यू हुआ था जानवी का फ्रॉम धड़क टू सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी. आई थिंक शी इज अ वेरी वेरी वर्सटाइल एक्ट्रेस. एंड इसी के साथ मैंने एक सवाल पूछा जो इंस्टाग्राम पे है. अगर आप जवाब दे सकते हैं उसके लिए सबसे पहले इंस्टाग्राम पे जाना पड़ेगा. गो एंड चेक अस आउट 106.2 बिग एफएम इट इज. यू कैन से हाय टू मी एम मानसी टॉकिंग एंड आई विल बी टॉकिंग टू यू टुमारो 5 to 9 एज व्हेन आई कीप यू कंपनी. आई विल सी यू टुमारो. यू हैव अ ग्रेट नाइट एंड अप नेक्स्ट विद द बिग चिल लॉन्ग ड्राइव वाले वेरी रिलैक्सिंग अनप्लग्ड गाने आप सुनेंगे. मैं आपसे मिलती हूँ कल. अंटिल देन स्टे राइट हियर. गुड नाइट.

0: गुस्से से बोलेगी नहीं जाऊंगा, प्यार से बोलेगी मर भी जाऊंगा। इस जमीन और इस आसमान से परे जहां ना वक्त ना तुम्हारे मेरे सिवा कोई और, बस एक जज्बा हो कि तुम मुझ में हो और मैं तुम में।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: नमस्ते।
3: ओला।
2: अस्सलाम वालेकुम।
4: बोंजूर।
5: नी हाओ।
4: डिड यू नो, नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया। Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
6: Ready, throw!
7: Papa John's is celebrating Disney and Pixar's Toy Story 5 with Toy Story 5 personal pizzas. Order two or more eligible items for 25 dirhams each and receive one collectible per qualifying order while stocks last. See Disney and Pixar's Toy Story 5 in cinemas now. Better ingredients, better pizza. Papa John's. Order now.

0: पिलाने पिलाने और जमीन भाई पसारे बोल रही थी कि हाउस मार्क कि तू मुझे मिला नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे प्रिया के पैर का पैराशूट भी स्लोली स्लोली स्लोली
1: बिग 106.2 बिग 106.2 दैट्स माय सॉन्ग बाय ई एंड।

0: Big Chill, where every song feels like a deep breath after a long day. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार।
2: कब तक वापस लौटेगा?
1: यूं ही, यहीं। 4-5 दिन में?
2: चार या
1: पांच? पांच।
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड, प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड। The Big Chill, brought to you by InsuranceMarket.ae.
4: InsuranceMarket.ae.
0: Big 106.2, the beat of Bollywood.

मुझे चाहे न चाहे ये तेरे बस में तो है, और मैं तुझको न चाहूं ये मेरे बस में नहीं।